91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो 2 सेशन।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

क्यानो नश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तुम्हारा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ मैं आ तुम्हारा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कने तुम्हारा सारे इ बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

भोजन धर्मशाला गणेशोत्सव तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
5: बच्चन जी।
6: बोलो बच्चा जी।
5: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
6: कुली? हाँ कुली थी।
5: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
6: हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ।
5: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
6: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
5: गलत जवाब।
6: हाँ?
5: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
6: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
7: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
8: बेटा टीवी है उसको।
7: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
8: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
7: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
8: अरे क्या अर्जुन,
9: उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
10: अर्जुन
9: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
11: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
12: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
13: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
13: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
14: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
13: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
14: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
15: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
14: बस हो गया।
15: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
16: हेलो
17: राजेश जी, मैं
10: मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
16: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
17: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
17: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
18: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
16: अरे
1: काट दिया।
18: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
18: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
19: RBI कहता है,
20: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
21: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
22: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
21: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
22: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
21: हाँ देखो क्या हो गया।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,

0: फिल्म कुली की थी ना?
1: कुली? हाँ कुली थी।
0: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
1: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
0: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
1: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
0: गलत जवाब।
1: हाँ?
0: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
1: अरे सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ।
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला,
7: और डॉक्टर को भी।
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी, अन्ना आंटी को भी,
5: और ब्लड डोनर को।
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: हेलो
10: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
9: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
11: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
12: सर इतने कहाँ से?
11: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
13: 2,00,000 क्या हुआ पापा?
12: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
9: अरे
12: काट दिया।
13: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
12: फ्रॉड?
13: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
12: तो पैसे गवाओगे,
14: RBI कहता है।
15: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
16: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
13: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे।
17: Oh, no.

0: मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की दिखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
1: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
0: हाँ देख लो क्या हो गया।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लाइव कार्यक्रम में 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और आप सभी पहुंच गए हैं 16 नवंबर में, आज दिन है बुधवार का। और श्रोताओं, आप सभी को, उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का ये दिन मना रहे हैं। और इस समय आप लाइव हैं हमारे रेडियो से, साथ में हमारी जो ऐप है रेडियो गुंजन की उससे भी, और हाँ, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज से भी आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। और साथ ही में 88.4 मेगाहर्ट्ज हमीरपुर धटवाल की आवाज से जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, अब आप ये मत सोचिएगा कि जो ऐप से हमें सुन रहे हैं उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं हम, या फिर जो रेडियो पर से सुन रहे हैं उनका नहीं कर रहे हैं। देश विदेश में बैठे हुए जितने भी लोग हमें, जो भी रेडियो से सुन रहा है, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी सुबह में 16 नवंबर की। ये जो हमारी लाइव प्रोग्राम होता है गुड मॉर्निंग धर्मशाला, उसमें आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया द्वारा। तो कार्यक्रम में ले लेते हैं हम सबसे पहला अपना कार्यक्रम का विचार। हाथों ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं? तो पैरों ने बोला कि उसके लिए जमीन पर रहना भी पड़ता है। जमीन पर रहिए, हवा में नहीं। और इसी बात से मुझे एक बात और याद आ रही है, वो ये कि जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो कुछ लोग जो है ना, वो वाकई में ऐसे, मतलब रहते तो होते तो जमीन पर हैं लेकिन चलते ऐसे हैं जैसे कि हवा में ही उड़ रहे हों, या फिर अगर उनके गाड़ी में ना, गाड़ी में या फिर जो फोर व्हीलर है और टू व्हीलर है उसमें अगर पंखा लगा दिया जाए ना, तो वो सच में हवा में ही उड़ जाएं। या होता पता क्या है, जब सुबह सुबह का वक्त होता है, सभी को जल्दी होती है, अपने अपने गंतव्य स्थान पर सभी ने पहुंचना होता है, परंतु भाई ऐसे एक्सपीरियंस मैं करती हूँ ना रोड पर कि क्या कहने, आप समझ ही सकते हैं ना। और आप लोग भी करते होंगे इस तरह के एक्सपीरियंसेस, और साथ में आप लोग शायद हो सकता है कि आप भी ये सब चीज़ें करते हों कि आगे वाले, मतलब अगर आगे ट्रैफिक जाम है तो पीछे से हॉर्न बजाते रहेंगे जैसे कि पता नहीं उन्हीं को जल्दी है और बाकी जो लोग ट्रैफिक में फंसे हैं उन्हें तो कहीं जाना ही नहीं है, वो तो इत्मीनान से बैठे हैं। मतलब जो अगर हॉर्न नहीं बजा रहा है तो वो, उसको जल्दी नहीं है, उसे कहीं नहीं पहुँचना है ना, ऐसा ही सोचते हैं ना आप कि पीछे जो गाड़ी वाला है उसको बहुत जल्दी है। तो हम कई बार कह भी देते हैं कि भैया ऐसा करो, उड़ करके चले जाओ। और आज कार्यक्रम में आसमान की बातें भी होने वाली हैं, किस लिए होंगी मैं कार्यक्रम में आगे बताऊंगी आपको। फिलहाल कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की खिदमत में हम लेकर आए हैं। देखो कितनी प्यारी सी सुहानी सी सुबह हो गई है ना, वैसे तो सुबह कितनी देर की हुई है। आप सभी की छतों पर ये जो प्यारा सा सूरज है, हमारा देवता, सूरज देवता, वो मंडरा रहा है। तो चलिए फिर ये गीत भी सुन लेते हैं, कुछ इसी तरह से कुछ कहता है भाई। अगर आप लेट हो गए हैं उठने में तो अब उठ जाइए।

जी श्रोताओं, तो जागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गई ऋतु वाकई में वापस नहीं आती है, ना गया हुआ समय वापस आता है। तो हमें अगर, वैसे ये नींद से जागने की बात नहीं है, ये ओवरऑल जागने की बात है। दो मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। चलिए 16 नवंबर के मौसम के बारे में आपको बता देते हैं। अभी का हमारे स्टूडियो के बाहर क्या तापमान है, या फिर ओवरऑल धर्मशाला की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या फिर शाम को हल्की गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस वक्त तो बाहर बड़ी अच्छी धूप खिली हुई है जिसका आनंद आप भी उठा रहे होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हवा में नमी है 85%। आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं। गुरुवार यानी कि 17 सितंबर को आंशिक धूप और छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 18 सितंबर को आंशिक रूप से बादल बने रहेंगे और हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम साफ और धूप खिले रहने की संभावना है 19 तारीख को। और अब आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या कहा है। हिमाचल में इस मानसून सीजन में बारिश का दौर अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 सितंबर तक बारिश का क्रम बना रहेगा, जबकि 18 सितंबर से मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी और इस बार 30 जून को प्रवेश करने वाले मॉनसून के दौरान अब प्रदेश में सामान्य से 11% कम बारिश दर्ज की गई है। यानी कि 30 जून को जो मॉनसून था वो हमारे प्रदेश में कदम रख चुका था। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 सितंबर को प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और 18 से 21 सितंबर तक मॉनसून के कमज़ोर पड़ने से बारिश केवल एक दो स्थानों तक ही सीमित रहेगी और भारी बारिश का कोई अलर्ट वैसे है नहीं। हालांकि 20 सितंबर तक निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में आंधी तूफान बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कुछ लोग शायद ऐसा भी कह रहे थे कि अब 3 महीने तक अभी फिर भी बारिशों का दौर है, तो इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि हमें लगता नहीं अभी तक हुई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कार्यक्रम में आगे आपको ज़रूर बताएंगे। और इसी जानकारी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मौसम की बात हो रही है, मौसम का गीत सुन लेते हैं। प्यारा प्यारा सा

श्रोताओं, वैसे गीत तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है कि हम इस गीत को छोड़ें, बस सुनते ही रहें ऐसे ही लवली मौसम जो बाहर बना हुआ है उसके साथ साथ हम भी। लेकिन प्रादेशिक समाचारों का वक्त भी हो रहा है, तो बस अब से कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो आपको लिए चलते हैं।

0: नागपुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हुए अहम समझौते में सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के 8 गांवों के लोग होंगे विस्थापित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किशाऊ बांध के एमओयू के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सभी संबंधित राज्यों की भाजपा सरकारों का आभार जताया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाने का किया आह्वान। प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागरूकता के तहत आज ऊना जिला में एंटी चिट्टा वॉकथॉन का होगा आयोजन। और केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यापारियों को 2,000 रुपए तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित किशाऊ बांध परियोजना को लेकर कल दिल्ली में अहम समझौता हुआ। इस परियोजना से सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के 8 गांवों के लोग विस्थापित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे हिमाचल के हितों की बड़ी जीत करार दिया और कहा कि इस परियोजना के बन जाने से हिमाचल को हर वर्ष 1,200 करोड़ रुपए की आय होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किशाऊ बांध के एमओयू के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सभी संबंधित राज्यों की भाजपा सरकारों का आभार जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सलाह दी कि वह अपनी पीठ थपथपाने की बजाय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित संबंधित राज्यों की भाजपा सरकारों का आभार जताए।
1: अच्छा होता अगर आज मुख्यमंत्री जी कहते कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, गृहमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, दिल्ली भाजपा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ, राजस्थान भाजपा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार उनका भी धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा में भाजपा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार उनका भी धन्यवाद करता हूँ। शाहू बांध का एमओयू हो गया, 6 राज्यों के बीच में ये एमओयू हुआ है और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद, यानी कि किशाऊ बांध बनने के बाद, जिन राज्यों को पानी की आवश्यकता होगी वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए भी किशाऊ बांध के माध्यम से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवा केवल भविष्य के नेता ही नहीं बल्कि आज के भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के सक्रिय भागीदार और हितधारक भी हैं। राज्यपाल ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित भारतीय युवा संसद के 31वें राष्ट्रीय सत्र को संबोधित करते हुए देश के 26 राज्यों से आए युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी की सराहना की। इन प्रतिनिधियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सार्थक विचार विमर्श किया। राज्यपाल ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने और इन्हें अपने आचरण और सार्वजनिक जीवन में आत्मसात करने का आग्रह भी किया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने तथा महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए व्यापक अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में चल रहे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में आज मुख्य वक्ता के रूप में कानून बनने के बाद समीक्षा संसद को जनता से जोड़ना विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। पठानिया ने कल सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध ऐतिहासिक मित्रता, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और वैश्विक दक्षिण के प्रति समान प्रतिबद्धता पर आधारित एक व्यापक राजनीतिक साझेदारी का स्वरूप ले चुके हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
3: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जाँच और दवाइयाँ मुफ्त मिलती है।
2: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत ऊना जिला में एंटी चीटा वॉकथॉन का आज आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
5: नशों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऊना जिला प्रशासन द्वारा आज एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों के अलावा महाविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऊना शहर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। वॉकथॉन इंदिरा गांधी स्टेडियम से आरंभ होकर नए बस अड्डे से होते हुए वापस स्टेडियम में प्रवेश करेगा, जिस दौरान प्रतिभागी नशों के खिलाफ नारों, बैनरों और तख्तियों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के सुचारू रूप से आयोजन को सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राज्यीय और अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश न करके अन्य वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचाने हेतु पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बनाया है, जो आज सुबह 8 बजे से वॉकथॉन के समापन तक लागू रहेगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि राज्य में ये अभियान कल 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है यूपीआई संचालन समिति द्वारा लागू दरों, परिचालन व्यवस्थाओं और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा के बाद भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत एमडीआर ढांचा पेश किया गया है। इस ढांचे का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए भुगतान को मुफ्त रखने और छोटे व्यापारियों की रक्षा करते हुए यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हिमाचल के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा के चलते कुल्लू जिला के बुनकरों व हस्तशिल्पियों को भी लाभ मिल रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
6: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हिमाचल के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय ने हस्त निर्मित उत्पादों को देशी विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में पहल की है। इस सुविधा के चलते जिला कुल्लू के बुनकरों व हस्तशिल्पियों को भी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हिमाचल प्रभारी AK गौतम के अनुसार योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को आधुनिक बाजार से जोड़ना है। ऑनलाइन बिक्री की सुविधा मिलने से हिमाचल के हस्त निर्मित उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में खरीदार मिल सकेंगे तथा वे विदेशी बाजारों में भी निर्यात कर सकेंगे। मंत्रालय ने देश भर में ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से घर द्वार तक सामान पहुंचाने वाली नामी कंपनियों से समझौता किया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला के शब्द है, किशाऊ बांध पर समझौता, हिमाचल के हिस्से के 2000 करोड़ दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान देंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, किशाऊ बांध परियोजना से बिना निवेश हिमाचल को होगी 1200 करोड़ की आय। मौसम की खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है, हिमाचल में 21 सितंबर तक कई स्थानों पर खराब रहेगा मौसम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हुए अहम समझौते में सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के 8 गांव के लोग होंगे विस्थापित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किशाऊ बांध के MOU के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी संबंधित राज्यों की भाजपा सरकारों का आभार जताया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाने का किया आह्वान। प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत आज ऊना जिला में एंटी चिट्टा वॉकथॉन का होगा आयोजन। और केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यापारियों को 2000 रुपए तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

जी श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार आप सभी ने सुन लिए हैं और अब कार्यक्रम का अगला भाग हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ बने हुए हैं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

चलिए आज जमीन और आसमान की बातें होने वाली हैं कार्यक्रम में, तो उससे पहले हम सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है अदालत। युगल स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले के।

जी दोस्तों, तो आपने सुना कि जमी पर हमें आसमां पर बिठा कर गिरा तो न दोगे। आज इंसान प्रकृति से पूछ रहा है या प्रकृति इंसान से पूछ रही है ये बातें। बीते दशकों में इंसान ने क्लोरो फ्लोरोकार्बन और हाइड्रो फ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक गैसों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके उस सुरक्षा कवच यानी कि हमारी ओजोन परत में छेद कर दिया था। अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए हमने उस आसमान रूपी ढाल को कमजोर किया। तो दोस्तों, अगर ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो जाती तो जमीन पर कैंसर, फसलों की बर्बादी और भयंकर गर्मी जैसी आपदाएं आ जाती, यानी कि हम आसमान से सीधे जमीन पर या फिर विनाश की खाई में गिर ही जाते। खैर, अब इससे आप ये तो समझ ही गए हैं कि आज विश्व स्तर पर ओजोन परत दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और ये जो गीत आपने अभी अभी सुना है अपने रेडियो सेट्स पर, प्रकृति ने हमें जो सुरक्षा और जीवन का ऊंचा मुकाम यानी आसमान दिया है ना, हम अपने कर्मों से उसे नष्ट करके खुद को नीचे न गिरा लें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और किगाली संशोधन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी वैश्विक कोशिशें इसी बात का वादा है कि हम आसमान पर बने रहेंगे और पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे।

चलिए अब जान लेते हैं हम आज के दिन के इतिहास को, यानी 16 सितंबर को क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी खास करके भारत में। १९१६ में महान कर्नाटक संगीत गायिका और भारत रत्न से सम्मानित M.S. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरई में हुआ था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय थी वो। १८९३ में प्रसिद्ध राष्ट्रीय ध्वज गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद का जन्म हुआ था। १९३२ में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में यरवदा जेल यानी पुणे में के अंदर अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य हिंदू मतदाताओं को जाति के आधार पर विभाजित करना था। वैसे दोस्तों आज हमारे देश में ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर तरफ से आवाज उठ रही है इस आरक्षण प्रथा को खत्म किया जाए। हम ये कहते हैं कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन उस वर्ग के लिए जिसको वाकई में उसकी जरूरत है। और कुछ समुदाय तो ऐसे हैं जो कि आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं कि भाई हमें आरक्षण नहीं मिला और हमें भी दे दो। तो आरक्षण केवल उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कि वाकई में थोड़े से गरीबी रेखा से नीचे हैं। हर किसी को आरक्षण की जरूरत मुझे लगता नहीं है आज के समय में है, और इस पर शायद हमारी सरकार जो है वो कुछ विचार कर भी रही है। ये विषय ना बहुत एक वास्ट विषय है, इस पर हो सकेगा तो हम कार्यक्रम किसी और दिन फुल फ्लेज कार्यक्रम इस पर करेंगे, और आप लोगों के जो विचार हैं वो भी लेंगे आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। आगे चलते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण स्वतंत्रता सेनानी गोपाल वेंकटेश प्रभु को पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था 1954 में। १९६५ के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजोरी तारापोर ने युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने सियालकोट के फिलोरा में असाधारण वीरता के साथ अपने बख्तरबंद रेजिमेंट का नेतृत्व किया और दुश्मनों के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रसिद्ध भारतीय भारोत्तोलक गीता रानी का जन्म हुआ था 1981 में। भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह, जो कि 1965 के युद्ध के नायक थे, जो भारतीय वायुसेना में 5 सितारा रैंक प्राप्त करने वाले एकमात्र अधिकारी थे, उनका निधन हो गया था 2017 में। और अब बात करते हैं हम आज के दिवस के बारे में। जी हाँ, ये जो हम विश्व ओजोन दिवस आज मना रहे हैं ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे बाद में विश्व स्तर पर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत आधिकारिक तौर पर 1992 में ओजोन परत की रक्षा के लिए समझौते का पक्षकार बन गया था।

दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जिस से हम नीचे जमीन से नीला आसमान देखते हैं ना, वो केवल पहला आकाश है। ठीक उसके ऊपर लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक और आकाश शुरू होता है। जिसको हम समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसी आकाश के उस पार वाले आकाश में ओजोन परत, हमारी ओजोन लेयर स्थित है। और ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा का असली कवच उस नीले आसमान के पार भी छुपा हुआ है। जमीन के स्तर पर यदि ओजोन गैस बनती है तो वो प्रदूषण और स्मॉग का कारण बनती है, जो कि इंसानों के लिए हानिकारक है। लेकिन जब हम आकाश के उस पार यानी समताप मंडल में जाते हैं तो वही ओजोन गैस जीवनदायिनी बन जाती है और हमें सूर्य की जानलेवा यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है।

और जब 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छेद देखा गया था तो लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसानों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया और आज ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो ये गीत हमें बताता है कि हम अगर सीमाओं के पार जाकर के वैश्विक प्रयास करें तो हम पर्यावरण को फिर से नया जीवन दे सकते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें अपनी सोच को केवल जमीन या फिर सामने दिखने वाले आसमान तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसके पार की अदृश्य दुनिया की परवाह भी करनी है।

0: समझ तो गए होंगे आप कि कौन सा गीत अब अगला आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर। जी हाँ, खामोशी फिल्म का गीत आ रहा है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे। तो दोस्तों, आज विश्व ओजोन दिवस है और आपके लिए और भी एक ऐसी सोच लेकर आई हूँ जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कितने खुश होकर के हम ये गीत सुनते हैं ना, आज मैं ऊपर। मतलब वाकई में हम लोग ऊपर पहुंचना तो चाहते हैं, हर तरह से पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये एक ऐसा ये रिश्ता ऐसा भी है जो मीलों दूर है फिर भी बेहद पास है।
1: आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर।
0: हम बात कर रहे हैं जी इसी ओजोन परत की। वो रहती तो आसमान में है, धरती से मीलों ऊपर, बादलों की भी पार, लेकिन उसकी धड़कने, उसका वजूद और उसका पूरा का पूरा भाग्य जुड़ा है हमसे, यानी कि इस धरती पर रहने वाले इंसानों से।

और जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमें भी ऐसा ही एहसास होता है ना, यही गीत हम भी गुनगुना रहे होते हैं उस वक्त, आज मैं ऊपर। तो क्या गजब का संयोग है ना, उस वक्त हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि भाई कोई ओजोन परत भी है यहाँ हमारे नीचे। आसमां तो नीचे नज़र आता है, लेकिन वो परत ना हमें नीचे से नज़र आती है, ना हमें आसमान के ऊपर से नज़र आती है। घाव धरती देती है और दर्द आसमान को होता है। धरती पर हम और आप आराम के लिए एसी या फ्रिज चलाते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं उड़ाते हैं, और उसका सीधा असर कहाँ होता है, मीलों दूर उस नीले आसमान की ओजोन परत पर।

0: कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में आपने सुना ये गीत खामोशी फिल्म से, और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मेरे साथ मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।
1: नीले गगन के तले,
0: जी हाँ, धरती का प्यार पले। तो मैं आपको जमीन और आसमान का रिश्ता बता रही थी गीतों के जरिए, और साथ में आज हम ओजोन लेयर डे भी मना रहे हैं वर्ल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पर इस रिश्ते की खूबसूरती तो देखिए, जब आसमान की वो ओजोन परत बीमार पड़ती है ना, तो वो चुप नहीं बैठती। सूर्य की जो तीखी जानलेवा पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो सीधे हमारी धरती पर आने लगती हैं। यानी अगर आसमान कमज़ोर होगा तो धरती पर बीमारियां और तबाही बढ़ जाएगी, और अगर आसमान सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं।

तो वैज्ञानिकों ने जब इस दर्द को समझा तो पूरी दुनिया एक साथ आ गई। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि साल 1987 में सबने कसम खाई कि हम आसमान को और नहीं सताएंगे।

0: हमने उन केमिकल्स को रोकना शुरू कर दिया और जानते हैं नतीजा क्या हुआ।
1: धरती का प्यार पले।
0: जी बिल्कुल इसी गीत की जैसा। आज आसमान मुस्कुरा रहा है, ओजोन परत का वो घाव वो छेद धीरे धीरे भर रहा है।

कौन नहीं चाहता है ऐसे नज़ारों को देखना, और ऐसे नज़ारे हमें तभी मिलेंगे जब हमारा आसमान सुरक्षित होगा, क्योंकि अगर एक भी अल्ट्रावायलेट रे वहाँ से धरती पर आई तो जल सकती है हमारी धरती।

जी दोस्तों, तो आसमान की सेहत सुधारनी है तो शुरुआत धरती से ही करनी होगी। आइए अपने घरों में पर्यावरण अनुकूल चीजें लगाएं और पेड़ लगाएं, इन खूबसूरत रिश्तों को और मजबूत बनाएं। और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। क्योंकि बातें अभी और भी हैं हमारे पास। और इसके साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं 10। साथ ही हम लाइव आ गए हैं अपने फेसबुक पेज से भी। और हम भी झूम रहे हैं साथ साथ इस गीत के, और साथ में अभी आगे आने वाले और भी बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार से गीत आप लोगों के लिए हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि आज के कार्यक्रम में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में कुछ है इस तरह का और अपने पर्यावरण के लिए कुछ काम करते हैं आप, जैसे कि अगर कंपोस्टिंग करते हैं घर में किचन वेस्ट से, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको लगता है कि हमारी धरती के लिए आपके मन में थोड़ा सा भी दर्द है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो कॉल ज़रूर कीजिएगा, हमसे वो साझा ज़रूर कीजिएगा। हम इंतज़ार में हैं आपके फ़ोन कॉल्स के। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे फेसबुक पेज लाइव से भी, और रेडियो से लाइव तो आप हमें सुन ही रहे हैं। चलिए अब कार्यक्रम में हम अगला विषय पकड़ते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम में आज हम दो विषयों पर बात करने वाले थे। एक तो ओजोन डे, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, और अब बारी है आपकी बात करने की। आप हमें बताएंगे कि आप क्या क्या अपनी धरती के लिए कर रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं किया तो आप क्या आगे करने वाले हैं, ताकि धरती के साथ साथ हमारे आसमान की सेहत भी अच्छी रहे।

0: और अब हम बात करेंगे कि सफर मंजिल का नहीं खुद को खोजने का भी होना चाहिए।
1: वो बात नहीं है,
0: ये गीत सुन लेते हैं, बड़ा प्यारा सा गीत है।

जी सुना आपने गीत, कैसा लगा? जो मज़ा है फ़कीरी में वो मज़ा नहीं अमीरी में या कहीं पर भी नहीं, है ना। जो फ़कीर होते हैं ना, उनके पास दो घड़ी बैठ करके देखिएगा, कुछ बातचीत करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस गीत का पूरा सार। अब जो बात हम करने वाले हैं कि सफ़र मंजिल का नहीं, खुद को खोजने का भी होना चाहिए। तो अब खुद को खोजने के सफर पर आगे बढ़ेंगे हम। जो लोग रुक गए घर का कोई जरूरी काम करने में, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाने में, सूख रहे पौधे को पानी देने में, जो लोग रुक गए किसी अपरिचित आवाज के पुकारने पर, किसी के दुख के बांटने पर, किसी के दुख बांटने के लिए, किसी उदास आदमी को सुनने के लिए, किसी अपरिचित के खत का जवाब देने के लिए, और वे लोग जिन्होंने दुनिया बचाना भागने से ज्यादा जरूरी समझा, वे लोग हो सकते थे इस दुनिया के सबसे तेज धावक और जीत सकते थे ये पूरी दुनिया। आया कुछ समझ दोस्तों? आज जो बात हम करने वाले हैं कि जो लोग घूमते फिरते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, सोलो ट्रैवलर्स होते हैं या फिर ग्रुप में ट्रैवलिंग करते हैं, अपने घर से बाहर निकल जाते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, जरूरी नहीं है केवल वही लोग जो हैं वो पूरी दुनिया को जीतते हैं। वो लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं जो अपने अपने घरों में रुक जाते हैं किसी न किसी के ख्वाहिशों के लिए, किसी को सहारा देने के लिए। सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अहमियत लिए रहते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं आज यहाँ पर बैठ करके आप सभी से बात कर पा रही हूँ तो किसी किन्हीं ऐसे लोगों की वजह से जो कि पीछे रह करके मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भी घर को देख रहे हैं, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, कोई भी हो, हमें हर किसी को एक जैसी अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो शायद मैं यहाँ पर इस स्टूडियो में बैठी नहीं होती। और श्रोताओं, अब मुझे आप सभी से एक बिग अपॉलॉजी करनी है, जी हाँ, क्षमा मांगनी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हमें स्टूडियो में कॉल करते हैं वही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए हर वो श्रोता इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें सुन रहा है और बहुत ही ध्यान लगा के सुन रहा है, बहुत कीन ऑब्जर्वर है। और ऐसी ही एक श्रोता है हमारी अंजना कुमारी जी। और अंजना कुमारी जी ने हमारा ध्यान इस बात पर दिलाया कि आज 16 सितंबर है, और गलती से मैंने एक दो बार कार्यक्रम की शुरुआत में कह दिया कि आज 16 नवंबर है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने सामने में 16-9-2026 लिखा होता है और वो 9 के चक्कर में मेरे मुंह से नवंबर निकल गया। खैर, मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, जो गलती है वो गलती है, उसे मान लेना ही सही होता है। धन्यवाद अंजना जी। और आपने गुड मॉर्निंग कहा है, गुड मॉर्निंग जी, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर अभी तक आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, मतलब आपका अपना विशेष कार्यक्रम सुन रही हैं, तो दोबारा से हमें मैसेज के ज़रिए बता सकती हैं, क्योंकि फेसबुक पेज लाइव तो अब हमारा हो चुका है। तो
ऐसे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जो हमें इतने ध्यान से सुनते हैं, और उन सभी का धन्यवाद भी रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से।

अलग है, यानी कि जीवन में कुछ भी पहले से पूरी तरह तय नहीं है। आप जो मंजिल सोचकर चलते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहां पर पहुंचे ही, रास्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड मोड़ भी आते हैं। तो जब मंजिल खुद एक इत्तेफाक है, तो फिर मंजिल के पीछे भागना ही क्यों। जब हम मान लेते हैं कि रास्ता अनजान है और हर मोड़ एक इत्तेफाक है, तब हम मंजिल की चिंता छोड़ करके सफर का आनंद लेने लगते हैं। और यही अनिश्चितता हमें खुद के और भी करीब लाती है, क्योंकि हर नया इत्तेफाक हमारी एक नई ताकत और भावना को हमसे रूबरू करवाता है। और अब हम चल रहे हैं एक अनोखे मंजिल की ओर। तो इस सफर में हमें रोज नए लोग, नए अनुभव मिलते हैं जो सब इत्तेफाक हैं, लेकिन इन अजनबियों के बीच रहते हुए जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं या किसी परिस्थिति से टकराते हैं, तो असल में हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को पहचानते हैं।

0: तो दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं, कोई नौकरी के पीछे, कोई कामयाबी के पीछे, पर सच तो ये है कि सफ़र मंजिल का होना ही नहीं है, नहीं चाहिए, सफ़र तो खुद का, खुद को खोजने का होना चाहिए। क्योंकि मंजिल तो अनिश्चित है। क्या आपको लगता है कि आज हमने ये मंजिल तय कर ली, बस अब हम रुक जाएंगे? क्या जिंदगी रुक जाएगी? उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे आप। उसके बाद सफर शुरू हो जाता है एक नई मंजिल की ओर। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
1: आज मालूम।
0: कॉल जरूर कीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। जी हाँ, दो दो विषय हमने आपको दे दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: पशेमान भी हो जाती है।
0: हर खुशी, हर मुलाकात एक इत्तेफाक ही तो है, तो फिर मंजिल की जिद कैसी? अनजान रास्ते पर चलिए, हर इत्तेफाक से कुछ सीखिए और देखिए कि इस सफर के खत्म होने तक आप खुद को कितना बेहतर जान चुके हैं।

जी, तो आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो दोस्तों, ये है नॉन स्टॉप सफर जी। अब आपको सफर पर ही तो लिए चल रहे हैं। वैसे देखो तो हम जिंदगी में हर पल हर क्षण सफर ही तो करते हैं। अभी सफर वो अंग्रेजी वाला सफर नहीं है कि आप वो वाला सफर कर रहे हैं, हिंदी वाला सफर है भाई। हिंदी भी नहीं, उर्दू वाला सफर। और देखो क्या इत्तेफाक है ना, सफर भी उर्दू और मंजिल भी उर्दू।

0: तो जब कोई भी अकेले सफर पर निकलता है तो उसके हाथ में केवल एक बैग नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को नए सिरे से गढ़ने का साहस भी होता है।
1: चलती रहे जिंदगी।
0: वो केवल यात्रा नहीं करता बल्कि उन सामाजिक धारणाओं को भी पीछे छोड़ता चला जाता है जिन्होंने वर्षों तक उसके कदमों की सीमाओं को बांध के रखा था, उसके कदमों को सीमाओं में बांध करके रखा था। खास करके वैसे आज के संदर्भ में मैं ये बात महिलाओं के लिए कर रही हूँ क्योंकि सोलो ट्रैवलर्स महिलाओं को देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, इसने ये बंधन कैसे तोड़ दिए, और जो लोग उससे इंस्पायर होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन्होंने कैसे किया तो हम भी करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
0: लेकिन दोस्तों उनके लिए ये सफर किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं, फिर से कह रही हूँ खुद से मिलने का साधन बनता है।

और हर मोड़, हर रास्ता, हर अनुभव उसे ये याद दिलाता है, ये सिखाता है कि जीवन की सबसे लंबी यात्रा दुनिया की नहीं, अपने भीतर की होती है। और सदियों से समाज ने सुरक्षा के नाम पर, महिलाओं की बात करूं तो उसको चारों ओर आकांक्षाओं की अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि अकेले चलना खतरा है और स्वतंत्र निर्णय लेना दुस्साहस। लेकिन जब कोई महिला इन आशंकाओं के बीच पहला कदम उठाती है तो वो केवल सफर पर नहीं निकलती, बल्कि उन सभी मान्यताओं को चुनौती देती है जो उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करना चाहती हैं। उसका हर कदम ये प्रमाण बन जाता है कि हौसला बाहर से नहीं मिलता है, वो भीतर की अटूट दृढ़ता से जन्म लेता है।

हर अकेली यात्रा उत्साह के साथ अनेक आशंकाएं लेकर आती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अनजान रास्ते, अपरिचित लोग, नई संस्कृति और बदलता परिवेश मन में डर पैदा करते ही हैं। कई बार तो ये भय सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। परंतु जो महिला उससे भागने की बजाय उसका सामना करती है, वो अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान लेती है।

पर यही भय धीरे धीरे उसे सतर्क, समझदार और आत्मनिर्भर बना देता है। तब उसे एहसास होता है कि ज्यादातर सीमाएं तो रास्ते में नहीं थी ही नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में ही थी।

सोलो ट्रैवलर का सबसे अनमोल उपहार है अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और यहाँ पर न किसी की पसंद का दबाव होता है, न किसी की सुविधा का बंधन। हर ठहराव और हर रास्ता उसके अपने निर्णय का विस्तार होता है। कभी समुद्र की अनंत लहरें, कभी पर्वतों का मौन,

तो कभी किसी अनजान गांव की आत्मीय मुस्कान उसे एहसास करवाती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बंधनों से मुक्त होने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को बिना संकोच स्वीकार करने में है।

जी दोस्तों, जरूर दूर निकलिए। सोलो ट्रैवलर्स की सबसे बड़ी मंजिल कोई नया शहर नहीं, कोई नई जगह नहीं, बल्कि स्वयं का साक्षात्कार होता है। जब परिचित आवाजें और रिश्तों का शोर पीछे छूट जाता है, तब मन अपनी ही गहराइयों में उतरने लगता है। और इसी सिलसिले में हमने एक पॉडकास्ट भी किया है, किसी सोलो ट्रैवलर से बात भी की है। जल्दी ही आपके समक्ष वो पॉडकास्ट भी आ जाएगा, ऑडियो के रूप में भी और साथ में वीडियो के रूप में भी। आप हमें उस पॉडकास्ट को फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, वो भी जल्दी से जा करके कर लें, क्योंकि हम लोग भी तो फेसबुक पेज से लाइव होते हैं।

जी ज़रूर जाइए अपने सपनों की खोज में, लेकिन याद रखिए कि वो खोज आपको अपने भीतर ही मिलने वाली है, और वहीं उसे अपने जो अधूरे सपने, अपनी दबी इच्छाएं और अनगहे सवाल मिल जाते हैं जब मन अपनी ही गहराइयों में उतरने लगता है। और यही एकांत उसे स्वयं को स्वीकारना होगा, अपने संघर्षों को समझना, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना सिखाता है। वो जान लेता है कि उसकी खुशियाँ किसी उपकार की नहीं बल्कि उसके अपने अधिकार की प्रतीक हैं।

जी ज़रूर जाइए, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, हम आपको बता देते हैं। अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए, 10:30 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक।

हवाई सफर भले ही पूरा हो जाए लेकिन भीतर शुरू हुई यात्रा तो कभी भी समाप्त नहीं होती है। लौटने वाली महिला केवल तस्वीरें और स्मृतियां नहीं बल्कि स्वयं पर अटूट विश्वास लेकर के लौटती है। उसकी दृष्टि अधिक स्पष्ट, निर्णय अधिक दृढ़ और व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर हो जाता है। अब चुनौतियां उसे डराती नहीं बल्कि उसकी क्षमता पर विश्वास और भी ज्यादा गहरा कर देती हैं। तो अब अगर आपकी माता अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुकी हैं तो उनकी घूमने का इंतजाम कीजिए, उनको विश्वास दिलाइए कि वो भी सोलो ट्रैवल कर सकती हैं। और जिम्मेदारियों से निवृत्त ही क्यों हो, अगर उनका मन करे वो जब भी चाहें वो जा सकती हैं। उन्हें कम से कम इतनी आज़ादी आप लोग दे ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स भी हैं, वो कार्यक्रम में आगे ज़रूर बात करेंगे।

जब आप भी लोगों को घूमते फिरते देखते होंगे, एंजॉय करते देखते होंगे, तो आपका भी मन करता होगा कि काश हम भी निकलें इस रूटीन भरी ज़िंदगी से और चलें हम भी कहीं दूर।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति बठानिया। और आज है 16 सितंबर सन 2026, 10:35 हो चुके हैं।

देखो, जब हमारा भी मन करता है ना किसी उडारी लगाने के लिए, तो वाकई में हमारी भी जो बात है ना वो हमारे बस में बिल्कुल नहीं रहती है। और खास करके महिलाओं की बात करूं तो हर महिला के भीतर साहस, सामर्थ्य और अनंत संभावनाओं का एक विराट आकाश छिपा होता है।

सोलो ट्रैवल उस आकाश को पंख भी देता है और ये उसे एहसास करवाता है कि उसकी उड़ान किसी अनुमति से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास से तय होती है।

मुझे लगता है ना तो आप अपने पर्यावरण की चिंता करते हैं और ना ही कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं और ना ही आप लोगों को ये कार्यक्रम शायद पसंद आ रहा है, क्योंकि कुछ एक मैसेज तो हमें आ चुके हैं लेकिन फ़ोन कॉल आपका कोई भी नहीं आया। भाई क्या बात है, आज क्या हो गया, अच्छा नहीं है क्या, बता वही बता दीजिए, कम से कम कोई मैसेज करके बता दीजिए कि आज आपने डेट गलत बता दी और बस अब हम आपका कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं।

0: ना गल मेरे वस।
1: देखिए हम ना बात कर रहे हैं सफर की, तो शायद हो सकता है ये भी सोच सकते हैं हम कि हमने टाइम ट्रेवल कर लिया आज सुबह 9 बजे ही।
0: दे रही ना गल मेरे वस दी ऐसी आने गहा मैनू तक्या।
1: सीधे 2 महीने पे जंप कर गए थे हम।

अच्छा मुझे समझ में आ गया, आप लोग मगन हो गए हैं कार्यक्रम सुनने में। एक फोन कॉल आ रहा है, जरा ले लेते हैं फिर सुनाते हैं आपको गीत।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो जी,
1: हेलो, नमस्कार जी। प्रणाम। बिल्कुल
0: नमस्कार। हमारी आवाज़ ठीक आ रही है?
1: बिल्कुल सही है, सही, पूर्ण पे सही है।
0: अच्छा जी, बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं?
1: मैं झनसा से बोल रहा हूँ, अनिल।
0: अनिल बलोरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज
1: धन्यवाद।
0: आज दो विषय हमने रखे हैं, और किस पर बात करना चाहेंगे?
1: पहले तो आपने जो आपने जो पहला जो संगीत सुनाया था,
0: ओजोन परत।
1: पहला जो संगीत था आपका, वो राग भैरवी भी था, और
0: अच्छा, जो पहला गाना
1: आनंद
0: था,
1: आया।
0: मोर भई पंछी धुनिए सुनाए।
1: बस बस बस वही पहले वाला, मुझे
0: जी,
1: ऐसा लगे बस सुबह अभी हुई है बस।
0: अच्छा, सुबह अभी ही हुई है। हाँ जी, वो गीत
1: हाँ,
0: कैसा है, बड़ा
1: उस
0: मनमोहक
1: गाने को
0: सा।
1: सुनकर इतना राग भैरवी सुन के इतना आनंद आया ना,
0: जी
1: कि आता
0: धन्यवाद।
1: मतलब कोर भाग से प्रसन्नता आ गई, पीछा
0: चलिए, ये तो
1: मूड
0: लाइब्रेरी है, और हम तो खोज के लेकर के आ जाते हैं कि पसंद आना चाहिए। आपको पसंद आया, हमें खुशी
1: गया।
0: है।
1: जी, धन्यवाद। अच्छा, दूसरा आप बात कर रहे थे अभी जिंदगी
0: हाँ जी,
1: के सफर के बारे में, तो
0: हाँ जी
1: उसके बारे में एक बात बताते हैं तो, कि
0: जी
1: सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांस रुकी तो सब साथ चलने लगे।
0: अच्छा जी हाँ, बहुत गहरी बात कह दी है आपने तो।
1: जी,
0: सांस रुकी तो सब
1: यही
0: साथ
1: यही
0: चल
1: एक
0: रहे थे,
1: सच। हाँ,
0: यही सच्चाई है।
1: यही एक जीवन की सच्चाई है। जो अभी आप सोलो के बारे में बात कर रहे थे, तो
0: जी
1: जिंदगी का जो सफर है ना, वो सबको अकेले ही तय करना है।
0: जी हाँ, और हमें लगता है कि हमारे साथ में आसपास में लोग हैं, लेकिन हम उसकी गहराई तक जा नहीं पाते हैं ना।
1: वो जो है ना, वो सब एक शॉर्ट टाइम के लिए है।
0: मिथक मिथक है, मिथक।
1: हाँ, मिथ है, मतलब इन फ्यूचर आपको मतलब कुछ समय के बाद अकेले
0: हाँ जी
1: ही जाना है।
0: हाँ
1: इसके बारे में आपको इसी बताता हूँ कि
0: जी
1: किसी ने बोला है कि लाइफ इज लाइक अ नोटबुक, लाइफ इज लाइक अ नोटबुक, टू पेजेस आर ऑलरेडी रिटन बाय द गॉड। ठीक है, जो दो पेज है ना, पहला और जो लास्ट पेज, भगवान के द्वारा ही रिटन
0: जी
1: लिखे गए हैं,
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: और फर्स्ट पेज जो है वो है हमारा बर्थ का। तो जो फर्स्ट पेज इज रिटन बाय बर्थ, एंड लास्ट पेज इज द डेथ,
0: जी
1: एंड द सेंटर जो पेज है, सेंटर जो मध्य के पेज है ना,
0: हाँ
1: वो आदमियों को खुद लिखने हैं अपने कर्मों के द्वारा।
0: बिल्कुल। और हर दिन जो है वो नया चैप्टर होता है ना हमारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बात है, वो जो असली बात है कि आदमी उस कर्मों के अनुसार उस पेज को कैसे खोलता है और कैसे लिखता है।
0: हमने ही लिखना है उसको, क्योंकि वो अगला जो
1: हाँ
0: पेज होता है वो हमेशा ब्लैंक होता है। बहुत अच्छी बात कह रहे
1: बिल्कुल
0: हो आप
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी।
1: यही एक जीवन की सच्चाई है। और इस सच्चाई का ये है कि अगर आदमी किस तरीके जीता
0: अनिल जी, हम ना
1: वो,
0: हम इसी में पड़े रहते हैं कि हमें इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो हम कुछ अपना जो मन का करना
1: नहीं
0: चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं।
1: एक्चुअली वास्तव में क्या कि आदमी को संभाव में ही है, सही,
0: जी
1: सबके प्रति एक जैसा एक जैसा भाव होता है आदमी का,
0: हाँ,
1: ये चीज है।
0: हम तो
1: तो
0: जैसे कि हम अपने सारे श्रोताओं को एक जैसा ही समझते हैं, चाहे कोई हमें फोन कॉल करे या ना करे, लेकिन हमें पता है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं हमें बड़ी शिद्दत से सुनते हैं, और उस पार बैठ करके खुश भी होते हैं, गीतों का आनंद भी लेते हैं, और आप फोन कॉल करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और कहना चाहते हैं कुछ?
1: बस, बाकी तो आप पर्यावरण के बारे में बात कर रहे थे, वो भी अच्छा है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: जी
1: एक ही बात, एक बात भरूंगा आपको। एक आपने एक दो लाइनें बीच में उठाई उठाई थी,
0: जी
1: वो अपने आरक्षण के बारे में, तो
0: हाँ जी, वो बड़ा
1: मैं उसके बारे में दो लाइनें बोलूंगा। अगर
0: अलग विषय है। हाँ
1: नहीं, आपने बात करी थी उसके
0: जी
1: बारे में,
0: हाँ,
1: तो
0: की थी मैंने। बताइए।
1: उसके बारे में एक छोटी सी बात बोलूंगा। अगर आदमी को हमें एक मौलिक अधिकार मिले हुए, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार,
0: हाँ
1: तो अगर वो अधिकार दिए हैं, तो इसका मतलब है कि हर हर आदमी बराबर है। पहली बात,
0: बिल्कुल, हाँ जी
1: तो भगवान ने हमें बराबर भेजा है, अभी सबसे भगवान ने को कसर छोड़ी है, तो तू जब कोई कसर छोड़ी है तो हम लोग उसको जब इस जीवन में आता है तो उसके उसको कौन से आरक्षण देते हैं? ये बहुत बात गलत है ना कि हमने जो प्रायोरिटी दी है वो आरक्षण के, अरे वो आरक्षण के, जब भगवान ने बराबर लाइट दी है, बराबर रोशनी दी है, बराबर वायु दी है, ऑक्सीजन दी है, हर चीज भगवान ने को जलवायु में कोई कमी नहीं छोड़ी है।
0: और देखो ना समय भी ये नहीं की बराबर दिया है 24 घंटे सबके लिए,
1: ये नहीं की अमीर के घर में सूर्य पहले पहुंचता है और गरीब के घर में बाद में पहुंचता है। तो हमने वो जो इक्वलिटी में डिफरेंस कहां से तैयार कर दिए? ये जो डिफरेंसेस है, ये जो राजनेताओं ने तैयार किए, हमें हमारी मेरी समझ से बाहर है और गलत है
0: जी।
1: मैं ये मानता हूँ।
0: नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं, आपकी समझ जो है वो ही सबकी समझ भी होनी चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें भी दे दो जी, तो उनको भी समझना चाहिए कि सबके पास
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: समय भी बराबर है। तो उसका जब बाकी लोग उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी करें, अपने जीवन में आगे बढ़े।
1: जी,
0: धन्यवाद अनिल जी, बहुत
1: और ये समय देने के लिए आपको मैं साधुवाद करूंगा। ये आपकी एक इनायत है मेरे प्रति कि समय देते हैं आप लोग, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा तहे दिल से। धन्यवाद।
0: हम और भी श्रोताओं से चाहते हैं कि वो भी सुनते तो हैं बड़ी शिद्दत से, लेकिन कॉल भी करा करें, अपने विचार हम तक रखें। अनिल जी जैसे रखते हैं, कभी कभी इंदु जी भी फोन कर देती हैं, और हाँ कुछ पहले लाइव में उनका गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आया था, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग इंदु जी, आपको भी। चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं, और मुझे लगता है जो बातें अनिल जी ने कही है आज के इस कार्यक्रम में, उस पर आप सभी गौर जरूर फरमाएंगे। और चलिए फिर से चलते हैं हम एक और सफर की ओर।

0: लगे हैं।
1: तो दोस्तों, सोलो ट्रैवलर का अर्थ लापरवाही नहीं बल्कि साहस और सजगता के संतुलन में है।
0: लगने लगे हैं।
1: आनंद यात्रा का तभी पूरा होगा जब सुरक्षा हर कदम साथ चले, इसलिए स्थान की पूरी जानकारी, स्थानीय महिलाओं का मार्गदर्शन, सुरक्षित ठहराव, दिन के समय अधिक भ्रमण और विश्वसनीय लोगों के साथ लोकेशन साझा करना और आवश्यक आपातकालीन साधन साथ रखना अनिवार्य है। आज मेरी टंग बहुत ट्विस्ट कर रही है। और सबसे बढ़कर अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा रखें, क्योंकि मन की सच्ची चेतावनी अक्सर किसी भी खतरे से पहले दस्तक देती है। तो बेशक आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, घर से दूर अनजानी जगहों पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। अपनी फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस का समय ऐसा रखें कि अगर आप दिन के समय अपनी मंजिल पर पहुंच पाएं, देर रात नई जगहों पर चेक इन करने से बचें।
0: चले

0: चलने लगे।
1: हो सके तो सिर्फ महिलाओं के लिए बने जो डॉर्म रूम होते हैं वो बुक करें, और यहाँ पर आपको पहले से बनी बनाई कम्युनिटी, भरोसेमंद स्टाफ और ग्रुप में दिन भर घूमने के लिए ऑर्गेनाइज टूर भी मिल जाते हैं। और शहरों में घूमने के लिए सड़क पर यूं ही कोई भी ट्रांसपोर्ट पकड़ने के बजाय ऊबर या फिर ओला जैसे जो एप्स होते हैं वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। जब हम भी यहाँ से बाहर कहीं जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं।
0: रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूंगे, कम ये तभी फासले।
1: और ऑनलाइन पहले से बुक किए गए भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।

अगर आप अपनी पहली यात्रा पर अकेले जाने में हिचकिचा रहे हैं तो महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाए गए वेरिफाइड ग्रुप टूर बुक करवा सकते हैं। वो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे या कहीं जहां पर भी आप कोशिश करें तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप इस तरफ इंटरेस्टेड हैं तो खुद ब खुद आप तक वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। और ये ऐसे ग्रुप टूर्स होते हैं जो कि सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और रहने की व्यवस्था का ध्यान भी रखते हैं।

आप सहज महसूस करें। और भी बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर करने के लिए, करेंगे फिर किसी और दिन। फिलहाल ये गीत एंजॉय कीजिए। और इस गीत के साथ अब ज्योति को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति भी। इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहयोग मिला मैडम शशि से, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगी किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली? हाँ कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब।
5: हाँ?
2: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
6: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
7: बेटा टीबी है उसको।
6: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
7: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
6: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
7: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हा?
8: अर्जुन
7: बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
9: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
10: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दे, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
11: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
11: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
12: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
11: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
12: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
13: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
12: बस हो गया।
13: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
14: हेलो
15: राजेश जी, मैं
8: पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
14: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
15: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
15: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
14: अरे
1: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
16: RBI कहता है,
17: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
18: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
19: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
18: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे।
20: oh, no.
18: मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
19: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
18: हाँ देखो क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।
1: मेरी साथ ला

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली? हाँ कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब। वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
6: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
7: बेटा टीबी है उसको।
6: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
7: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
6: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
7: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
8: अर्जुन
7: बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
9: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
10: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा

0: हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
1: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उड़ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
1: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
3: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
1: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
3: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
4: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
3: बस हो गया।
4: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
6: 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2,00,000
8: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
5: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
9: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: पैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
12: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
11: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
12: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
11: हाँ देखो क्या हो गया।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ हर हफ्ते आप सभी के लिए लेकर आते हैं खास जानकारियां खास कार्यक्रम के साथ। जी दोस्तों, तो आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो इस कार्यक्रम की एक और कड़ी, एक और जानकारी को लेकर आप सभी के साथ जो है वो हम जुड़ने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं रुचिका के साथ, और साथ ही हमारे खास जो मेहमान जुड़ते हैं
1: प्रियाशी
0: जी। तो स्वागत है मैम आपका इस बहुत ही खास बातचीत में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं,
0: और उम्मीद करते कि हमारे दोस्त भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी
1: हूँ। बिल्कुल
0: जी। तो मैम, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, जैसे सीजनली अगर हम सब्जियों की बात करें तो वो भी सीजनली होती है। बात करें थोड़ा सा हम खाने की, मेरा खाना किसको पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। सभी खाने के जो है मजे लेते हैं और अलग अलग शॉप्स को ट्राई करते हैं, रेस्टोरेंट्स को ट्राई करते हैं कि कहाँ बेहतर खाना मिल जाएगा।
1: देखिए, हमें लगता है बदलते मौसम के साथ जो सब्जियों में, जो सीजनल वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में बदलाव आता है, उसका एक प्रकार से मानसिक स्तर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम लोग सीजनल वेजिटेबल्स की जगह ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसा खान पान लेने लगे, ऐसी चीजें ग्रहण करने लगे जो हमारे सेहत के लिए अच्छी ना हो, तो उससे हमारे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है, वो सारे हमारे जो अंदर के गट बैक्टीरियाज हो गए, या फिर हमारे जो अंदर हार्मोन्स हो गए, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, उन सब से आपस में कनेक्टेड होता है। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि एक व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहती है। इसीलिए डाइट बिकम समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ।
0: जी, तो अभी दोस्तों हमने खाने की बात की है कि किस तरह से जो है खाना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे कि मैम ने अभी बताया। तो मैम, अक्सर हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, बाकी चीजें हम देखते नहीं है कि ये हमारे चाहे मानसिक हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पेट भर जाता लेकिन आंखें नहीं भरती है। तो एक कहते हैं ना कि ओवर ईटिंग, तो बिल्कुल दोस्तों ओवर ईटिंग की हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब कि हम तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट खाना देखते हैं तो मन करता है कि सारा ही खाना हम खा ले, लेकिन पेट में उतनी जगह नहीं होती। लेकिन तो अक्सर हम यही सुनते हैं, ज्यादातर अगर हम खाने की बात करें तो ओवर ईटिंग का ही हमारी जुबान पे जो है नाम आता है। लेकिन एक जो हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ये हम किस तरह से समझ सकते हैं, असल में ये ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसे हम कैसे, अगर हम साधारण से शब्दों में अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें तो हम कैसे इसे समझ सकते हैं?
1: देखिए, खाना तो सबको ही बहुत पसंद होता है
0: जी,
1: लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में खाने से संबंधित स्ट्रेस डेवलप होने लग जाए, बी एट कि वो खाना ज्यादा खाना चाहे वो एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर वो खाना कम खाना चाहे वो एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर बोलिए कि हम खाना खा भी रहे हैं और हमें फिर दिक्कत भी हो रही है, तो मतलब खाना खाना तो चाहते हैं, उसकी अर्ज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम वो खाकर खुश नहीं हो रहे हैं, हम उसे खाकर और दुखी हो जा रहे हैं। तो बेसिकली जब खाना और स्ट्रेस साथ में एक्यूमुलेट हो जाए, साथ में एसोसिएट हो जाए, तब हम उसको सोच समझ पाती है कि अच्छा ये एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। इसमें अगेन कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि खाने की मात्रा या जो स्ट्रेस है या उनका जो इम्पैक्ट है, चाहे वो खाना खाना हो ना खाना हो, या फिर जो स्ट्रेस आ रहा है उसके साथ, उनका जो इम्पैक्ट है वो एक पर्सन के सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट करने लग जाए। उसके साथ साथ अगर उनको उस चीज से जो स्ट्रेस है वो लगातार बना हुआ है, खाने की मात्रा जो है या खाना की जो फ्रिक्वेंसी है या ड्यूरेशन है या जो उसकी इंटेंसिटी है, वो आम लेवल से कम या आम लेवल से ज्यादा हो जाए, और ये चीज रिकरेंटली प्रेजेंट रहे। जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को बहुत इच्छा होती है खाना खाने की, तो हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा
0: जी।
1: वंस इन अ व्हाइल वो चीज करी गई है, इट्स टोटली ओके, सब अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर वही चीज बार बार होने लगे, डेली लेवल पर होने लगे, तब वो चीज कंसिडर करी जाएगी या समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ रुचिका जिनसे हम समझ सकते हैं अच्छा कि एक व्यक्ति की जो ईटिंग हैबिट है अब वो ईटिंग डिसऑर्डर में तब्दील हो रही है।
0: तो मतलब कि जैसे बीमारियों की ही बात करें, रिलेट कर सकते हैं एक तरह से हम, कि जब एक आधी बार अगर हम उसे फेस करें तो नॉर्मल है, लेकिन जब बार बार वो हमें चीज परेशान करना शुरू कर दे एक तरह से, या तो जैसे हम खाने की बात करें तो कई बार ऐसा होता है जब बच्चों की बात करें खास करके, तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बाहर अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मन डेली ही जब एक बार बाहर का खाना खा लिया तो फिर डेली मन ना करे बनाने का, तो वो बाहर का खाना जो है एक तरह से वो डिपेंडेंसी जो हो जाती है उसको हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं या वो अलग वे में है।
1: वो अलग है, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ईटिंग हैबिट इज नॉट गुड, ईटिंग की हैबिट्स भी होती है। पर जब हम लोग डिसऑर्डर की बात करते हैं ना रुचिका, तो वो बहुत एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करी जा रही होती है।
0: तो ये मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ मैम कि जब हम इसे डिसऑर्डर का नाम दे रहे हैं तो वो एक्सट्रीमिटी मतलब कि किस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करें।
1: स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर हियर। व्हेन समबडी हु गोज आउट डेली एंड हैव फूड दैट विल गिव देम जॉय, वो उन्हें खुशी देगा
0: जी,
1: वो उन्हें स्ट्रेस नहीं देगा। तो क्योंकि स्ट्रेस प्रेजेंट ही नहीं है तो वो डिसऑर्डर में माना ही नहीं जाएगा।
0: ओके, मतलब कि जो हमें एक तरह से टेंशन्स में लेके जाए, सोचने
1: भी मजबूर कर दे, हमारे दिमाग में रेकरेंटली ये थॉट आता रहे कि हमने ज्यादा खा लिया, हमने ज्यादा खा लिया, हमने ज्यादा खा लिया, हमने ज्यादा खा लिया, अब उसको कंपनसेट करने के लिए या उस गिल्ट से अपने आप को रिलीज करने के लिए देन द पर्सन वुड अटेम्प्ट डिफरेंट थिंग्स, एक्सरसाइज करेगा, इतना दौड़ेगा, फिर वो अपने इनटेक्स को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब तक आप, अब जैसे लोग जो जिम जाते हैं वो भी अपने इनटेक को लेके काफी कैलकुलेटिव होते हैं
0: जी,
1: लोग एक एक ग्राम को कैलकुलेट कर करके खाते हैं, उसमें बुराई नहीं है, वो एक डिसिप्लिनरी ईटिंग है, वो उनकी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। बट अगर यही पार्ट उनको स्ट्रेस देने लग जाए, उनको उनकी नींद उड़ा दे, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका मन ही ना लगे, उसमें उनका ध्यान ही ना लगे, उनका अटेंशन इसी चीज के अराउंड ही घूम रहा है कि मैंने इतनी कैलोरीज खा ली, तब वो चीज डिसऑर्डर का रूप ले रही है।
0: ओके,
1: तो जो व्यक्ति, जो बच्चा डेली बाहर का खाना खा रहा है वो तो उसको तो जॉय मिल रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके ध्यान में भी नहीं है कि आज मैंने क्या क्या खा लिया, ये मुझे नुकसान भी दे सकते हैं
0: जी।
1: तो इसीलिए उसको हम लोग पुअर ईटिंग हैबिट्स बोलेंगे, उसे हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर का नाम नहीं दे सकते
0: जी। बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी भी इस बात को बहुत अच्छे से जो है रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि अक्सर हमारे मन में बातें एक तरह से आ ही जाती हैं कि कई बार होता है, हम बच्चों की ही बात नहीं करें, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम बाहर एक बार खाने के लिए मन करता है तो फिर वो डेली भी कई बार रूटीन बन जाती है। तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि जो खाना हमें एक तरह से स्ट्रेस ना दे, कोई टेंशन ना दे, कोई परेशानी ना दे, तो उसे हम डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे। जो खुशी दे वो हमारे लिए एक तरह से बैड हैबिट या एक बोल सकते हैं कि लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है उससे, अनहेल्दी फूड जो है वो हमारे अंदर जा सकता है। लेकिन हाँ, डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो डिसऑर्डर वहां पे हम काउंट करेंगे जहां की जो खाना हमें एक तरह से बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन में लेके चला जाए, गिल्ट में लेकर चला जाए और हम बस पूरा टाइम उसी के बारे में सोचते रहे। तो ये चीजें प्रेफर करती हैं डिसऑर्डर को खास करके। हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि क्या क्या इसके लक्षण रहते हैं या किस कितने प्रकार के ये रहता है, तो उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के ब्रेक के बाद आइए फिर से अपनी बातचीत की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि खाने की डिशेस जो होती हैं बहुत प्यारी प्यारी सी होती हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी सी होती हैं, और जब भी खाने की बात चलती है तो मुंह में पानी आ ही जाता है, और जब डिशेस का नाम आ जाए तब तो मन करता है कि हाथों में ही आ जाए, तो क्या बात है। तो बहुत इस खास बातचीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो मैम, जैसे कि हमने बात की कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है हम किस तरह से मानते हैं या समझ सकते हैं इस चीज को, अब हम बात करें क्या ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये सिर्फ हमारे खान पान या वजन से जुड़ी एक समस्या है, या फिर इसके पीछे एक गहरा मानसिक प्रभाव जो है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है?
1: डेफिनेटली इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज है। देखिए, खाना हमारे कल्चर में बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, सिर्फ सर्वाइवल के एस्पेक्ट से ही नहीं लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी। फूड हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विथ लव ऑफ अ मदर। हम जब कभी किसी के यहाँ एज गेस्ट भी जाते हैं तो भी वो बोलते हैं, नहीं नहीं आप एक रोटी और खा लीजिए, एक और ले लीजिए, तो उनसे उनका प्यार झलकता है। ऐसे ही बचपन से ही जब एक बच्चा पैदा होता है तब से वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर सर्वाइवल, एंड फूड या बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज समथिंग विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड फ्रॉम द मदर। मदर बिकम्स अ सिंबोलिज्म ऑफ फूड, समवन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड मी फूड, एंड फूड इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल। तो जहां पर ऐसा होता है कि बच्चे को कम प्यार मिल रहा है या ज्यादा प्यार मिल रहा है, सो ओवर पैम्परिंग हो गई या फिर बहुत कम प्यार मिल रहा है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी, अब हर बच्चे में तो इस प्रकार की चीज नहीं टेक प्लेस करेगी, बट इन सर्टेन केसेस व्हाट हैपेंस इज कि उनके अंदर ईटिंग को लेकर पुअर हैबिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आती है, या किसी प्रकार की एंजाइटी डेवलप होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करता है, जो व्यक्ति के बिहेवियर से या उसकी सोच समझ से उसको उस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने में उसकी मदद कराता है। नाउ इमेजिन कि अगर एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, सो देर इज दिस बिलीव इन देम कि आई एम नॉट गुड इनफ, और माइंड क्या करता है ना, माइंड किसी भी नेचर से या प्रकृति से भिन्न नहीं है, ये भी प्रकृति ही है। आप देखेंगे रुचिका तो आप समझेंगे कि प्रकृति में हर चीज जो है वो एक बैलेंस की फॉर्म में चलती है
0: जी,
1: राइट? अब अगर व्यक्ति का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काफी नहीं हूं, तो उसका एक्सटर्नल बिहेवियर होगा कि मैं काफी हूं,
0: बिल्कुल
1: वो उसे कंपनसेट करने का प्रयास करेगा, और मैं काफी कैसे हूंगा जब मुझे हर वो चीज मिलेगी जो मैं
0: चाहूंगा,
1: मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कंपनसेट कर सके। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैं इनफ नहीं हूं आएगा कि मुझे प्यार कम मिला है, या मुझे उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, या कोई मुझे प्यार नहीं करता बिकॉज मैं इनफ नहीं हूं इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते। हेंस उसका एक्सटर्नल बिहेवियर रहेगा कि मुझे प्यार मिले, वो प्यार को कहाँ से लेने का प्रयास करेगा, फूड से, बिकॉज पीपल कैन नॉट कंट्रोल और चेंज द ह्यूमंस अराउंड देम, बट दे कैन कंट्रोल और टेक चार्ज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स।
0: बिल्कुल, तो ईटिंग हैबिट्स को हम कंट्रोल
1: करने का प्रयास करेंगे, वहां से हम इंसान जो है उसको कंपनसेट करने का प्रयास करते हैं
0: जी। और ये एक तरह से कंपनसेशन की हम बात करें तो लाइफ में हर कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये बातें एक तरह से हमारी डेली रूटीन से ही जुड़ी हैं, और अगर हम पूरी गहराई से देखने लगे, सुबह से लेकर शाम तक देखने लगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, कई बार हमारे मन में ये बातें हमें परेशान करती ही करती हैं। तो जैसे कि अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसके लक्षणों की हम बात करें, सिम्टम्स की हम बात करें, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे में ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो परेशानी शुरू हो रही है, या हमें ये फेस, मतलब कि हमने शुरू कर दिया अपनी लाइफ में से फेस करना?
1: देखिए, देर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट एंजाइटी रिलेटेड टू फूड कि मैंने खाना या तो नहीं खाया है, या तो मुझे खाना और खाना है, या फिर देर इज अ गिल्ट अटैच टू इट कि मैंने इतना खाना क्यों खा लिया, और दैट देर इज कॉन्स्टेंट वरी अबाउट मैं इतना खाना खाऊंगा और इतना नहीं खाऊंगा. ये चीज सुबह से लेकर रात तक रहेगी, कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी एक लंबे अरसे तक, मतलब हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता गुजर जाएगा, बट इंसान इसी चीज में अटक चुका है. उनका जो सोच है, जो उनकी ओवर थिंकिंग है, वो इसके रिगार्डिंग ही चलती रहेगी. जब इस प्रकार की चीजें हो और इंसान के बिहेवियर में या उनके वेट में, बॉडी वेट में अचानक से कोई बॉडी, उनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा या फिर उनका वेट घट जाएगा, जब इस प्रकार की चीजें होती तब समझ जाना चाहिए कि ये जो है ठीक नहीं जा रहा, कुछ तो इश्यू है.
0: तो मैम, जैसे अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो क्या ये एज वाइज डिपेंड करता है या सभी को एक तरह से ये फेस होती है चीजें?
1: एज वाइज तो नहीं इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि इस एज में इस प्रकार का ही डिसऑर्डर रहेगा. नहीं, ये इंसान के डिफेंस मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से, किस रूप से वो चीज, वो स्ट्रेस बाहर आएगा. देखिए, स्ट्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है जीवन में. अब उस स्ट्रेस, जिससे एंजाइटी डेवलप हो रही है, उस एंजाइटी को कंपनसेट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज होगा. वो डिफेंस मैकेनिज्म देन विल रिजल्ट इन टू डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर.
0: जी,
1: तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. ईटिंग डिसऑर्डर में भी अब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं, तो इसमें एज या फिर व्हाट फेज ऑफ लाइफ द पर्सन इज इन, इससे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है.
0: जी बिल्कुल. दोस्तों, कई बार ऐसा हमें लगता है कि बीमारियां जो है, मतलब कि हमारी एक तरह से ये मानसिक सोच होती है कि बच्चों को ज्यादा हो सकती है या युवाओं को ज्यादा हो सकती है या बुजुर्गों को ज्यादा हो सकती है, तो हम ये कई बार जो है एज वाइज जो है इन्हें डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं. तो इसलिए ये सवाल जो था मेरा अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम हर चीज को जो है वो अच्छे से समझ सके और जान सके, क्योंकि कई बार क्या होता है बिना जानकारी के हम जो चीजें करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता, तो वो भी हमें प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर देते हैं. तो टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स का जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर रहता है, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत.

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर। ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आप सभी जान रहे हैं। तो मैम, जैसे कि अभी हमने बात की कि किस किस तरह से जो है ये हमें फेस करना पड़ता है, एज वाइज नहीं होता है और ये जो है एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य पे जो है प्रभावित करता है। अब हम बात कर रहे थे गीत से पहले कि ये कितने टाइप्स का रहता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर को हम कितने टाइप्स में लेते हैं या कितने किस तरह से होते हैं?
1: ईटिंग डिसऑर्डर देखिए मेनली तीन टाइप्स के हैं। तो पहला जो आई थिंक जिसको सभी लोग जानते हैं उसे हम बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर।
0: वो किस तरह से रहता है?
1: बिंज ईटिंग का मतलब है कि आप इकट्ठा एक बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं। इंसान को अंदर से ऐसी अर्जेस आती हैं कि मुझे खाना खाना है
0: जी।
1: बेसिकली पहले स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस एंजाइटी ट्रिगर होती है। एंजाइटी ट्रिगर होने पर वो अपनी एंजाइटी को शांत करने के लिए बहुत सारा खाना खाने की इच्छा उनके अंदर जागरूक होती है, फिर वो बहुत सारा खाना मंगाएंगे और वो बहुत सारा खाना खा लेंगे। ये जो इतना सारा खाना खाते हैं, ये चीज अगेन परसिस्टेंटली प्रेजेंट रहेगी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और तभी इस डिसऑर्डर को डिसऑर्डर का रूप दिया जाएगा। क्योंकि बिंज ईटिंग तो अक्सर आम आदमी भी कभी कभी कर लेता है, बट अगर कोई व्यक्ति बिंज ईटिंग को डेली लेवल पर कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, या जैसे ही स्ट्रेस आ जाए तभी वो इतना सारा ओवरली, आप समझ रहे, ओवरली ही खाना खा ले जितना शायद पॉसिबल ही नहीं है एक आम व्यक्ति के खाने के लिए। जैसे आप आधा केक खा सकते होंगे बिंज, आप उसको बोलेंगे मैंने

0: बिंज ईटिंग कर ली। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिंज ईटिंग कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा दो केक, तीन केक, चार केक खा जाएंगे। तो दैट इज द लेवल ऑफ डिफरेंस, जो स्केल की बात हो रही है ये उस लेवल का डिफरेंस है बेसिकली।
1: तो मैम आपको क्या लगता है कि अगर हम इस डिसऑर्डर को देखें, बिंज ईटिंग को, तो क्या ये डेली में, हमारी लाइफ में, डेली रूटीन में आ सकता है? इज इट
0: बिल्कुल
1: पॉसिबल?
0: बिल्कुल आ सकता है। डिपेंड करता है कि स्ट्रेस किस लेवल का प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कंपनसेट या ओवरराइड करने का प्रयास करता है बाय ईटिंग अलॉट, बाय स्टफिंग देमसेल्फ।
1: क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर नॉर्मल हम लाइफ की बात करें, हम मतलब कि अपने ही अपने साथ जुड़ी कुछ बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार मन करता है कि बहुत कुछ खा ले, जैसे आप कह रहे हो कि मन करता है कि सब कुछ ही खा ले हम, है ना। लेकिन एक दिन खा लिया जैसे, तो अगले दिन फिर नहीं यार, मतलब हमें वो एक
0: फील
1: सिग्नल
0: हो
1: मिल
0: जाएगा
1: जाता है
0: ना
1: कि
0: कि
1: नहीं,
0: अब रुक जाना
1: हाँ रुक
0: चाहिए,
1: जाना
0: पेट
1: चाहिए,
0: बहुत भरा
1: नहीं तो
0: हुआ
1: फिर
0: है,
1: मुश्किलें हो
0: डाइजेशन ठीक नहीं
1: जाएंगी।
0: है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज फॉर अ ले पर्सन।
1: जी
0: लेकिन जब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का बहुत ही क्लासिक बिहेवियर होता है। क्लासिकली अर्जेस उनकी प्रेजेंट प्रेजेंट होती है जैसे ही स्ट्रेस उनके लाइफ में आता है। तो स्ट्रेस आएगा एंड देन दे विल स्विच टू बिंज ईटिंग, फिर से स्ट्रेस हुआ, फिर से बिंज ईटिंग। और वही बात है कि सर्कमस्टेंशियली डिपेंड करता है कि उनके लाइफ में स्ट्रेस आ कब कब रहा है। अगर वो परसिस्टेंटली बना हुआ है तो उनका बिंज ईटिंग हैबिट जो है वो भी परसिस्टेंटली बना रहेगा। ये चीज इसमें व्यक्ति के अंदर कंट्रोल नहीं हो पाता, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता कि मुझे अब जो है रुक जाना चाहिए, वो स्टॉप नहीं लगा पाता, वो खाते ही रहते हैं खाते ही रहते। अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग साइकोलॉजिकली इज सबकॉन्शियस लेवल पर उनका वो जो इतना खाना खा रहे हैं दैट इज ऑफरिंग देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट, अ सेंस ऑफ प्लेजर एंड अ सेंस ऑफ लव एंड बीइंग केयर्ड।
1: जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा दोस्तों कि किस तरह से कई बार हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया, दूसरे दिन मतलब
0: बिल्कुल
1: कि पता चल जाता है कि नहीं, अगर ज्यादा खा लिया तो मुश्किल हो जाएगी डाइजेशन में, फिर नींद भी नहीं आती, एक
0: बिल्कुल।
1: तरह से सो
0: अब
1: नहीं
0: रुचिका
1: पाते।
0: इसमें आप ये भी देखेंगे कि आप जो बहुत ज्यादा खा लेंगे वो सर्कमस्टेंशियली होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू आर इन स्ट्रेस,
1: बिल्कुल
0: है ना? और उसकी भी एक मात्रा होगी। आप
1: जी
0: स्ट्रेस में हैं अगर और आपने कुछ अच्छा खाना खा भी लिया, लेट्स से योर फेवरेट फूड या ऑल योर फेवरेट डिशेज यू हैव ईटन, उसका भी एक मात्रा होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक मात्रा तक ही हम खा पाते हैं, उसके बाद तो फिर ओवर ईटिंग हो जाता है। तो वो सेकंड टाइप की हम बात करें तो सेकंड टाइप किस तरह से रहेगा?
0: सेकेंड टाइप जो है उसका नाम है बुलिमिया नर्वोसा।
1: भूली में इसमें भूल जाते हैं कि
0: नहीं, खाना खा लेने के बाद भूलने का प्रयास करते हैं कितना खाया है।
1: मतलब भूलने से जुड़ा जरूर
0: सो बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा में इंसान बिंज ईटिंग तो करता है
1: जी।
0: बट दैट कम्स अलोंग विद रिमोर्स, एज इन उनके अंदर एक गिल्ट आ जाता है खाना खाने के बाद ही कि मैंने इतना सारा खाना क्यों खा लिया। और उस गिल्ट को कम करने के लिए देन द पर्सन ट्राइज टू वॉमिट। पहले पर्सन बहुत सारा खाना खाएंगे और फिर उसको खाना खाने के बाद ही उनको जो गिल्ट ट्रिगर होगा उससे दे विल ट्राई टू वॉमिट इट आउट कि उतनी सारी कैलोरीज उनकी बॉडी में ना जाए। तो ये पहले जो बिंज ईटिंग बताया, बिंज ईटिंग इसका भी पार्ट है, बस ये है कि इसमें बिंज ईटिंग के साथ साथ गिल्ट एंड वॉमिटिंग इंक्लूड रहता है।
1: तो मैम ये जो मतलब कि एक तरह से गिल्ट वाली बात है, तो ये किसी रीजंस की वजह से या सिर्फ स्ट्रेस का ही लिंक है इस पूरी इसमें, अगर हम बात करें?
0: देखिए स्ट्रेस का तो लिंक है ही, है ना? इट्स अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज अकरिंग। सबके डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग है। अब एक प्रकार से देखिए तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? हमें प्यार कहीं और से चाहिए बट हम उसको कंपनसेट कहीं और से
1: कहीं
0: कर
1: और
0: रहे
1: से कर
0: हैं।
1: रहे हैं।
0: उसके बाद हमें ये भी पता है कि इट इज नॉट गुड फॉर माई बॉडी, तो वो एक गिल्ट भी क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर अनडूइंग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहां पर व्यक्ति अपने करे हुए एक्शंस को अंडू करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर अनडूइंग का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है।
1: बट ये मतलब कि उन लोगों के साथ मैं भी ज्यादा रहती होंगी सिचुएशंस जो अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा मतलब सोचते हैं.
0: बिल्कुल. पीपल हु आर मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ दे अपियर, पीपल हु आर इन टू मॉडलिंग बिजनेस या फिर जो हमारे एक्टर्स हो गए
1: जी,
0: उनके साथ ये चीज होना ज्यादा पॉसिबिलिटी रखती है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्स्टेंट वरी रहती है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी कैलोरीज आई हैव टेकन. जो पीपल हु आर इन फिटनेस फील्ड है ना,
1: बिल्कुल.
0: तो इस तरह के लोगों को इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है.
1: और स्ट्रेस का भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऐसे ही फील्ड में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है. नॉर्मल लाइफ की हम बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी चीजें जो है उन्हें फेस करनी पड़ती होंगी.
0: किस तरह का स्ट्रेस?
1: जैसे अगर मतलब खाने से रिलेटेड ही अगर हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने खा लिया तो बहुत ज्यादा खा लिया, तो फिर वो सोच विचार, क्योंकि हमें तभी ऐसा फील होता है जब हमें एक तरह से एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है या सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती है.
0: वो तो देखिए पुअर ईटिंग हैबिट्स के वजह से हो रहा है. लेकिन जहां तक बात करी जा रही है ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ऐसा मानिए कि इंडियन कल्चर में हमारा जो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो 2-3% ऑफ पीपल दे गो थ्रू ईटिंग डिसऑर्डर.
1: जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे लोगों को मैक्सिमम इतनी चीजें,
0: जबकि यूएसए में ये चीज 9% तक प्रोमिनेंट है. तो दैट इज अराउंड 28 बिलियन पीपल. तो इट्स वो वेरी करता है, वो स्केल पर वेरी करता है, वो जो एक कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल नॉर्म्स है उन पर वेरी करता है. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी की सोच कैसी है, बिकॉज यू सी देर आर सर्टेन फैमिलीज जहाँ पर आपके अपियरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है. यू विल फाइंड पीपल लाइक यू विल फाइंड पेरेंट्स हु आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर ओन यू नो डॉटर्स एंड चिल्ड्रन की अरे तुम तो इतनी मोटी लग रही हो स्ट्रेस में, तुम ऐसे मत पहनो. तो उनको निग्लेक्ट तो मिल ही रहा है, उनको अनलव्ड और अनसीन भी फील हो रहा है, अनएक्सेप्टेड भी फील हो रहा है. ऐसे में व्यक्ति का दिमाग, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म, वो इस प्रकार से काम कर सकता है कि दे मे एंड अप हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर्स.
1: बिल्कुल. तो ये अगर ऐसी सिचुएशंस को हम देखें तो वो तो हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे. अगर अब की बात करें, आज के समय की हम बात करें, पहले
0: क्या देखा, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर क्या है ना कि लोगों को अवेयरनेस ही बहुत कम है
1: जी.
0: तो पुअर ईटिंग हैबिट या फिर रो दिए स्ट्रेस हो गया, लोग इसको इस तरीके से करके ना टाल देते हैं. बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो सामने आ पाते हैं. हमारे फील्ड में ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं आए हैं लोग, आते हैं लोग, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ पीपल जो अप्रोच करते हैं वो काफी कम होते हैं.
1: बिल्कुल. तो ये दोस्तों ज्यादातर केसेस यही हो सकते हैं, खास करके युवाओं में, लड़कियों की बात करें हम, उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है. क्योंकि अगर उन्हें लगे कि नहीं हम थोड़ा सा भी मोटापा जो है हम गेन कर रहे हैं,
0: तो अगर थोड़ा सा लूजिंग समथिंग एल्स, सी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है कि हमारी बॉडी अपियरेंस अगर ऐसी से ऐसी हो जाएगी देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मे एंड अप लूजिंग. तो उसका डर, उसका उस चीज को खोने का डर ना, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है दैट इट अल्टीमेटली एंड्स अप क्रिएटिंग इवन मोर स्ट्रेस फॉर द पर्सन. ऐसे में तो बहुत ही आम है कि पीपल विल रिमेन कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंसेस एंड दैट्स एक्चुअली रियली सैड.
1: बिल्कुल जी. तो दोस्तों हमने अभी दो टाइप्स की बात की है, एक और टाइप है जो कि हम बात जरूर करेंगे, जानेंगे कि उसमें किस तरह से, एक में तो भूलने की बात आ गई, गिल्ट की बात आ गई, और एक में बहुत ज्यादा खाने की बात आ गई. दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और अब तीसरा किससे रिलेट करता है वो हम इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद जानेंगे.

0: तो इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो बहुत ही खास जानकारी मैम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, जो कि आज तक आप सभी ने शायद ही सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अगर हम सुनने की बात करें भी बहुत कम लोग जानते होंगे जो मेडिकल फील्ड से होंगे या फिर जो थोड़ा सा जानने की इच्छा रखते होंगे। अदरवाइज तो हमें यही होता है, बस खाना खाओ, सो जाओ, कमाओ, बस यही करते रहो। तो आज ये बहुत ही खास जानकारी जो है वो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर एक पहलू को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम जानेंगे तभी तो हम उस पर काम कर सकेंगे, नहीं तो आज के समय में आप सभी देख रहे हैं कि जिंदगी किसी भी इंसान के लिए एक मजाक से बनकर रह गई है। तो खुद का मजाक ना बनने दे और ना ही किसी का बनाए, बल्कि ये बहुत ही अनमोल सा समय है, बहुत अनमोल जिंदगी है, तो इसे खुलकर एंजॉय करें पूरे नॉलेज के साथ, पूरी जानकारियों के साथ। तो मैम जैसे कि हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, तो दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, अब आते हैं थर्ड टाइप पे। तो उसमें याद रखने की बात है या फिर मिक्सअप है सारा?
1: देखिए स्टार्टिंग के जो दो हमने आपको बताए
0: जी,
1: बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया
0: जी,
1: दोनों ही ऐसे डिसऑर्डर्स हैं विच माइट टेक द पर्सन टुवर्ड्स ओबेसिटी। बिंज ईटिंग विल टेक द पर्सन टुवर्ड्स ओबेसिटी, बुलिमिया वो सब मे ट्राई टू प्रिवेंट टू टेक द पर्सन टुवर्ड्स ओबेसिटी। उसके अलावा देयर इज वन सिंड्रोम, नाइट ईटिंग सिंड्रोम।
0: बिल्कुल,
1: नाइट ईटिंग सिंड्रोम अगेन मे टेक द पर्सन टुवर्ड्स ओबेसिटी। तो दिस द थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज बेसिकली कंप्लीटली अपोजिट ऑफ इट। जैसे हमने बताया इन टू एक्सट्रीमिटीज, टू पोलैरिटीज एग्जिस्ट करती है, राइट
0: जी।
1: ज्यादा खाना भी खराब है और कम
0: खाना भी खराब है।
1: सो थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा दो शब्द है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसान खाना बहुत कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि उनकी बॉडी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, इतना कि उनकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, उनका जो कॉग्निशन है, जो उनका एक एनर्जी लेवल है बॉडी का, वो एक नॉर्मल लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें आती। यहाँ तक कि लोग एक एक ग्राम, क्या लोग एक एक मिलीग्राम को ऑब्जर्व करके, को कैलकुलेट करके खाना खाते हैं, जिन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनका बॉडी वेट आपको देखकर एहसास हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान का बॉडी वेट एकदम से गिर जाता है, एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खाना ही छोड़ रखा है, एक प्रकार से खाना ही त्याग देता है। वो दिन भर में दो चम्मच एवरी मील खाएंगे, या फिर वो इतना कम हो जाता है, दो दो चम्मच एवरी मील की जगह कुछ तो ऐसे सीवियर केसेस होते हैं रुचिका, जहां पर सिर्फ वन स्पून इन्हें देखा गया। और अगर आप उन्हें बोलो कि इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड ईट इट, तो उन्हें एंजाइटी हो जाएगी, इतनी एंजाइटी कि उनको लगेगा कि नहीं, अगर मैंने ये खाया तो मतलब आई विल डाई, आई डोंट वॉन्ट टू ईट इट। तो ये बहुत ज्यादा सीवियर डिसऑर्डर में
0: सर्वाइव करना मुश्किल,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिसऑर्डर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा देखा जाता है देन इन इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि अगेन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। जैसे 2-3% ऑफ पॉपुलेशन डज एक्सपीरियंस ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो या तो ये कम्प्लीटली अपोजिट है जो आपने सोचा।
0: बिल्कुल, रीजंस कुछ और हो सकते हैं, है ना, मतलब कि अगर हम यहाँ की बात करें कि यहाँ पे जैसे 2-3% की हम बात कर रहे हैं, तो मे बी रीजंस वही डाइटिंग और पतले होने की टेंशन या ये।
1: देखिए डाइटिंग जो है ना वो तो शुरुआत होती है, वो तो बस एक सोच होती है, वो एक माध्यम होती है।
0: जी,
1: इंसान को पता थोड़ी चलता है कि उनका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने वाला है। तो सरफेस लेवल पर इंसान को ऐसा लगता है, और ये बहुत ही लॉजिकल और एक्सेप्टेबल सा एक रीजनिंग लगती है कि नहीं, आई एम ऑन अ डाइट एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस दिस दिस। बट वो जहां पे रुकनी चाहिए, जहां पे उसको थमना चाहिए, वो वहां नहीं थमती। इट टेक्स द पर्सन टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ इट, कि जहां पर उस चीज की इंटेंसिटी, जो एंजाइटी की इंटेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ड्यूरेशन है ऑफ नॉट ईटिंग, उस पीरियड का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी है ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर थॉट कि मुझे नहीं खाना, या फिर मुझे मतलब खाना है खाना है, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिसऑर्डर, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है. तो बेसिकली द स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, दे हैव प्री ऑक्यूपाइड नोशंस, प्री ऑक्यूपाइड थाट्स अबाउट मुझे खाना खाना है या नहीं खाना है, या मुझे कितना खाना खाना है, मैं पतला हूँ या मोटा हूँ. ऐसे में जब व्यक्ति को ये भी लगता है कि मैं जो हूँ मैं हेल्दी ही दिख रहा हूँ, बस लोगों को नहीं लग रहा कि मैं हेल्दी हूँ, बट पर्सन अपने आप को हेल्दी ही समझता, उनको लगता है आई हैव टू रिड्यूस अ फ्यू इंचेस एज वेल. तो वही बॉडी इमेज से उनका अगेन काफी ज्यादा एसोसिएशन भी रहता है.
0: तो मतलब कि हम अगर ओवरऑल पूरे इन टाइप्स की भी बात करें या पूरे ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें, तो जो मेन इफेक्ट करता है वो हमारा स्ट्रेस ही इसको इफेक्ट करता है.
1: डेफिनेटली.
0: तो स्ट्रेस की वजह से जो है फिर हमारी पूरी दिनचर्या एक तरह से वो बिगड़ जाती है.
1: अब देखिए स्ट्रेस है तो कोपिंग मैकेनिज्म्स भी होंगे, बट अगर हमारे पास पुअर कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं तो इंसान उन्हीं को ही यूज करेगा ना, है ना. क्योंकि हमें तो नहीं सिखाया गया कि कोपिंग स्किल्स, बेस्ट कोपिंग स्किल्स क्या कौन कौन सी हैं और हमारे लिए स्पेसिफिकली कौन सी यूज होंगी. तो इंसान के पास उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी अवेलेबल रहता है एज अ डिफेंस, वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है, बी इट अनडूइंग, बी इट डिस्प्लेसमेंट, बी इट समथिंग एल्स. तो अल्टीमेटली हमें ये ख्याल रखना है कि हमें अवेयरनेस में रहना है. जितना ज्यादा एक इंसान अपनी अवेयरनेस में रहेगा कि क्या चीजें हैं जो उनके एक एवरेज जो हेल्थ कंसर्न है वो उससे बहुत ज्यादा कम जा रहे हैं या फिर उसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही चीजें नुकसानदेह है. अल्टीमेटली वही बात है ना कि आप खाना खाएं, आप खाना खाकर खुश रहें, है ना. खुश रहने के लिए खाना खाएं वो ठीक.

0: जैसे हमने बोला, स्ट्रेस है इसलिए खाना नहीं खाए, खाना खाया है और इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा भी अपने साथ ना होने दे।
1: जी
0: खाना जो खाया है उसके बाद खाना खा के उस गिल्ट में ना जाए। तो अपने आप को आपने इन तीन चीजों से बचाना है। जब आप अपने आप को इन तीन चीजों से बचा लेंगे तो आप जब भी खाना खाएंगे, जिस भी मात्रा में खाएंगे, आप प्रसन्न होकर खाएंगे और प्रसन्नता ही रहेगी आपके पास खाना खत्म होने के बाद। तो अपना आप इस प्रकार से थोड़ा अपने ईटिंग हैबिट्स हो गए या फिर आपका जो एक रहन सहन का तरीका हो गया, आप उन चीजों का थोड़ा इस प्रकार से ध्यान दें और हेल्दी खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं। ना ही अपनी मात्रा को बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम करें। तो बस यही है रुचिका, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे जो मित्र हैं वो सब खुश रहें और स्ट्रेस जो है, जो भी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, उस उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उनसे डील करने के लिए बेटर कोपिंग मैकेनिज्म्स का यूज करें।
1: जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी जानते ही हैं, वैसे तो एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आपको अभी भी मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057।
1: जी दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोन पे शायद हम उतना अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, उतना खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे सेंटर भी आ सकते हैं। तो सेंटर का पता रहेगा
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला विलेज, धर्मशाला।
1: जी दोस्तों, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आपके सवालों के सुझाव आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो बेफिक्र होकर या तो कॉल कीजिए या तो फिर सेंटर आकर अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो आज इस बातचीत के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
0: प्रेयसी को।
1: फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में 3री बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली? हाँ कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब।
5: हाँ?
2: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: हेलो
10: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
9: फिर से?
10: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
11: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
9: सर इतने कहाँ से?
11: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
10: 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
9: 2,00,000
12: क्या हुआ पापा?
9: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
10: अरे
9: काट दिया।
12: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
9: फ्रॉड?
12: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
9: तो पैसे गवाओगे,
13: RBI कहता है।
14: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
15: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
12: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
15: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
12: हाँ देखो क्या हो गया।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.3 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: Beat your music.

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब। वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
8: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
7: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
8: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
7: हाँ देखो क्या हो गया।

कानून देश मिलब दो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सायं दाई प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्नै तुसां भी कार्यक्रम दे सफर कन्नै जुड़ी जाने न, कन्नै सफर तुसां तक रहना है 2 ते 3 बजे तक। तो जरूर इस सफर कन्नै जल्दी जल्दी जुड़िया, कन्नै अपनी जेड़ा गलबात है से जरूर रखी सकदे, कन्नै अपनी पसंद दा जेड़ा गीत है सभी इस कार्यक्रम दे सफर च तुसां सारे भी सुनी सकते। जुड़ने वास्ते जेड़ा हमारा नंबर है से तुसां तक पहुँचाई दे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पुज्जा होगा ताईं तां तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स मैसेज करी सकदे या वट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाई ता है, कन्नै बाकी दियां जेड़ा गल्लां बातां न से इस गीत दे बाद पहुँचांदे तुहां तक। पहले ये गीत तुहां तक पहुँचाई दे न, फिर ही वापिस आउंदे न।

श्रोताओं तो सारे सुनिया एक गीत की शुरुआत फिर ते अहां वापिस आई हूं तुहां तक गलबात लेकर कने अज कने दिने दी गलबात करिए ता जेड़ा दिन बाद जेड़ा गलबात है से जरूर तुहां तक खास रहंदी है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कने जुड़ते न 16 सितंबर दी गल करिए 2026 दी ए बुधवार दा दिन जेड़ा से तुहां जरूर इंजॉय करा देने कने कुथी न कुथी जेड़ा त्यौहार हैं सह जो इक्की दुए ने जेड़े से जोड़ी करी रखते न कने सैर दा जेड़ा त्यौहार है से कर लै कने तुहां जरूर तेरियां जेड़ा तैयारियां ने से करना शुरू होई होने न कने करा दे भी होने न तो जरूर अपनी जेड़ा गलबात है सह तक पहुँचाई सकते न कने अपनी पसंद का जेड़ा गीत है सभी इस कार्यक्रम च सुनी सकते न पहले तो तुह सारे जो ही सैरी दियाँ बड़िया सारिया मुबारक होन एडवांस जी जड़े से तुह जो सैरी दियाँ मुबारक दे क्योंकि तैयारी तो जड़े से तुह दी जोर शोर ने लगी होनी है कने इसी कने तुह कार्यक्रम का जड़ा सफर है सभी इंजॉय करा देने तो इस सफर च जड़ा जुड़ने वास्ते नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे क्योंकि नंबर तुह तक पुजाऊंगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे नंबर है 701-811-7091 नंबर तुह तक पहुँचाई तो है कने फ्री ते अहां अपनी जेड़ा गल बात है से इत्थों ही रोकनी है कने तुह जो फ्री ते अगली जेड़ा गीत है फरमाइश है फरमाइश दी ओर लेकर चलते न तुह तक पहुँचाते न ये प्यारा दे गीत प्यारी दे फरमाइश

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो तो शशि कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तो हाँ तक रहता है 2 ते 3 बजे तक। इसी कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने हाँ कने अपनी जेड़ा गल्ला बातां न से जरूर सांझा जेड़ा से करी सकते कने इसी कने मौसम दी जेड़ा जानकारी है सभी जरूर तुहां तक पहुँचांदे न। मौसम दी जानकारी तुहां तक जेड़ा पहुँचाना लगे न धर्मशाला दी गल करिए तां 16 सितंबर 2026 धर्मशाला दा जेड़ा मौसम है से गर्ज कने हल्की बारिश कने जेड़ा बचारे न से पौने आ रही न तुहां भी मौसम दी ओर अगर नज़र दौड़ा देने न तो कुथी न कुथी काले जेड़ा बदल हैं से छाई हो न कने इन्ना लगा था कि हुण बरखा जेड़े से जरूर होने वाली है या बरखा जेड़े से कुथी कुथी लगी हुई भी होनी है बूंदाबांदी जेड़े से कने तापमान दी गल करिए धर्मशाला का जेड़ा तापमान है अधिकतम तापमान लगभग जेड़े से 18 डिग्री सेल्सियस कने 24 डिग्री सेल्सियस दी यहाँ गल करिए कने जेड़ा न्यूनतम तापमान है से वह 12 डिग्री सेल्सियस ते 16 डिग्री सेल्सियस दे बीच जेड़ा रहने दा अनुमान जेड़ा से जरूर मौसम विभाग ने यानी कि जेड़ा गूगल ने आयो दस्या ता जरूर है तुहां तक जानकारी पहुँचाई है कने इसी कने बारिश दी जेड़ा संभावना है से जरूर है कने तुहां भी अपने अपने गांव दी अपने अपने शहर दी जेड़ा मौसम दी जानकारी है से जरूर अहां तक पहुँचाई सकते कि मौसम तुहां दी साइड जेड़ा सकते है अहां तक तुहां तक जानकारी पहुँचाई थी है पर तुहां भी जरूर अहां तक जानकारी पहुँचाई सकते कने इसी कने तुहां सारे जो ही जेड़ा सैर पर्व जेड़े से जरूर तुहां दियां तैयारियां करा दे होने कने चोरा सोरा ने जेड़े से लगे होने न क्योंकि ये त्यौहार जेड़ा न सियाहां जो कुथी न कुथी इक्की दुए ने जोड़ी करी रखते न या अपनापन जेड़े सियाहां जो इन त्यौहारा च दिखने जो मिलता है या ये बोली सकते कि हाँ अपनी जिंदगी जेड़े से इतनी भाग दौड़ भरी बनाई लियो कि यहाँ ल चाहे से अहां दे रिश्ते न चाहे से अहां दे परिवार दे सदस्य न या अहां दा परिवार है अहां ल समय ही नहीं है पर ये जेड़ा त्यौहार है ना सियाहां जो बड़ी सीख दे करी जानते न क्या सीख देंदे न कि अपने वास्ते हाँ समय निकाल देन चाहे से अहां थोड़ा देर समय भी अपने वास्ते देंदे न कुथी ना कुथी अहां अपना जेड़ा समय है से अपने वास्ते जरूर निकाल देन कने तुहां भी कल्ले दी जेड़ा तैयारी है करा दे होने न कि चने दी जेड़ा दाल है सभी तुहां अज सेड़ी ती होनी कने राती जेड़ा से तुहां ते हजू जरूर पी लैना है कने इसी कने फिर तुहां जेड़ा प्यागा दियां तैयारियां न कि किस तरीके ने तुहां मिठियां रोटियां बनानियां न या बबरू बनाने न या फिक्कियां रोटियां बनानियां न तुहां भी अपनी जेड़ा गल्ला बातां न से जरूर अहां तक सांझा करी सकदे कि किस तरीके ने तुहां कल्ले दी जेड़ा तैयारी है सैर पर्व दी जेड़ा तैयारी है से करा दे न कि किस तरीके ने जेड़ा नई फसल जेड़ा से तेहदा यही शुरुआत जेड़ा से हो जाती है कने वैसे भी धाना दी जेड़ा फसल है से कुथी ना कुथी हुण निसरिया ही हो है धान जेड़ा न से निसरिया ही हो है ना कने तुहां भी खुश हो दे होने न क्योंकि हर जेड़ा किसान है ना से यही सोचता है कि कुथी ना कुथी जेड़ा हंदी मेहनत है मेहनत दा जेड़ा फल है से अहां जो जरूर मिल है तो जरूर मेहनत करी करी ही अहां अपने जेड़ा काम मन तिना जो हासिल करी पांदे न कने कुथी ना कुथी ये जेड़ा पर्व हन से अहां जो अपनी संस्कृति कने अपने जेड़ा रीति रिवाज हन तिना कने जोड़ी करी रखदे न या काकड़ी दी गल करिए या अमरूद दी गल करिए या बाकी जेड़ा फ्रूट हन या कोई भी फल है तिसदी जेड़ा से सैर दे दिन पूजा करदे न क्योंकि प्रकृति दी देन जेड़ा से अहां वास्ते बड़ी ज़्यादा है पर अहां प्रकृति दी रक्षा किस तरीके ने करा दे से अहां पर निर्भर करता है तो जो तुम जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़िया कने अहां भी इस सफ़र जो थोड़ा दिया
अग्गे बढ़ाते हैं कने तुह तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचाते हैं तो तुह भी इंतजार जेड़ा से जरूर करा दे होने ने कि अगली जेड़ा फरमाइश है से कालू दी है तुह तक पुजती है तो जरूर एक जेड़ा श्रोता न तिना अपनी फरमाइश अहाँ तक रखी है जरूर अहाँ थोड़ा दिया मोबाइल फोन दी और नज़र जेड़ा से दौड़ाते हैं क्योंकि नज़र तो हर जगह दौड़ाना जरूरी है कने मोबाइल फोन दी और नज़र दौड़ाना भी जरूरी है। ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची होवे व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा ना वे ना भी जरूर तुह तक पहुँचाने शमशेर सिंह जी कने सरैने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन कने तुह सारी भी इंजॉय करा।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया एक ही ते फरमाइश फरमाइश ते बाद हाँ फिरी ते अपनी गलबात ऊपर पूजी होने कने तो हाँ सारे भी गलबात भी जरूर इंजॉय कराते होने न तो श्रोताओं हिमाचल प्रदेश यानी कि कांगड़ा जिले की गल करिए कुथी ना कुथी ये जड़ा लोक संस्कृति कन्ने ये पर्व जड़ा है स्याहां जो जोड़ी करी रखता है। अगर तुहां शुरू ते मेरी गल बात सुना दोगे तो तुहां जरूर सुनी ली होनी है कि जड़ा कल जड़ा पर्व हो दे सैर दा जड़ा पर्व कल हो दे तो तुहां कुथी ना कुथी तिसदी जड़ा तैयारी है से जरूर करा दे उन्हें ना तुहां जो एक बारी फ्री ते एडवांस जी रेडियो गुंजन परिवार दी तरफ ते शहर दी जिड़ा बड़िया सारिया शुभकामनाएं कने तुहां जरूर इस पर्व जो बड़ी ही धूमधाम ने जिड़ा ऐसे बना दे उन्हें ना कुथी ना कुथी जिड़ा अहां दी मिट्टी दी महक है से अहां जो हमेशा अपनी जिड़ा धरती माँ है तिहा कने जोड़ी करी रखती है। सैर यानी कि सैर दा मतलब है नई जिड़ा फसल है प्रकृति जिड़ा से यहाँ वास्ते खुशहाल या हरी भरी जिड़ा तो हाँ अपने आस पास धाना दी फसल जो दिखा देन या हरा भरा जिड़ा से अपने आस पास जिड़ा से पान देन तो हाँ कने यही खेत खलियान जिड़ा से यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न कने जिड़ा हरियाली जिड़ा से हर जगह छाई हुआ है कुथी ना कुथी अहाँ यह हरियाली च अपना समय बिताते न तो अहाँ की जड़ा मने की शांति है शांति जड़ा से अहाँ जो जरूर मिलती है। कने गाँव की गल करिए ये जड़ा त्यौहार है से गाँव च बड़ी ही धूमधाम ने अहाँ बनाते न नई उमंग कने जड़ा नया उत्साह है से त्यौहार अहाँ वास्ते ले करी आते न कने घर च जड़ा से नए नए पकवान जड़ा न से बने होंगे न कने परिवार कने या मिली जुली करी अहाँ जड़ा से गाँव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या परिवार के सदस्य न से इस पर्व जो बड़े ही धूमधाम ने बनाते न इसी कने हर त्यौहार का बनाने का अपना अपना मतलब है कने वैसे भी त्यौहार ही हैं जड़ा अहाँ जो एक दूए ने हमेशा जोड़ी करी रखते न अहाँ भी तुह जो जोड़ी करी रखते न रेडियो गुंजन धर्मशाला कने कने तुह सारे भी जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जो इंजॉय करा दे होने न इंजॉय करा दे न करा भी पर जल्दी जल्दी कॉल भी करा क्योंकि 20 मिनटा कार्यक्रम च तुहल बचिया न जितना भी बाकी समय है तिश तुहां कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जड़ा से जरूर करी सकते कने अपनी पसंद का जड़ा पहाड़ी गीत है से सुनी सकते थोड़ा दिया आगे बढ़ते न कने तुहां तक के अगली जड़ा फरमाइश है पहुँचा देना।

0: પ્રશ્નતા તો સારે અહીં સુન્યા એકી તે ફરમાઈશ એ ફરમાઈશ અહ તક પહોંચી હોય ટેક્સ્ટ મેસેજ દે થ્રુ કને તિના દા ના વે વંદનાજી તો વંદનાજી તક અહાં એ ફરમાઈશ પહોંચાઈ કને તો હાં સાર્યા ભી એન્જોય કીતી ઇસી કરને તો હાં સારી ભી કાર્યક્રમ દે સફર કરને જુડી શકતે એ સફર જો ઓર ભી પ્યારા જડે સે બનાઈ શકતે અહાં ભી જરૂર अपनी गलबात करने इस सफ़र जो प्यारा बना देने कने तो हाँ सारे भी जिड़ा सैर दा पर्व है तिसदा जिड़ा इंतज़ार है से ज़रूर करा दे उन्हें इस मौसम दी फसल जिड़ा है से कुथी ना कुथी प्यार जिड़ा है से ज़रूर होने वाली है कने जलो हाँ कोई भी फसल लगा देन मेहनत कर देन कने मेहनत अहां दी रंग लेकर होंदी है तो कुथी ना कुथी अहां जो भी खुशी जड़ा से महसूस होंदी है कने जड़ा भी अहां घर है कल पकवान बनाने न तो कुथी ना कुथी से पकवान भी अहां जो खुशी देकर जांदे न कने गल करिए सैर दी तो सैर दे पर्व पर जड़ा से संस्कृति आयोजन या लोक गीत जड़ा लोक नृत्य न तिदा जड़ा आयोजन है सभी जरूर होंदे कने ये जड़ा मिठास है अहां जो कुथी ना कुथी अपने समाज कने रिश्तियां कने भाईचारा जड़े से भाईचारे दा जड़ा संदेश है से अहां जो जरूर दिंदा है सैर जड़े से लोक परंपरां च कने जड़ा केवल त्यौहार दे रूप च नहीं बल्कि कांगड़ा च कांगड़ा दी गल करिए तां जड़ा कांगड़े दी संस्कृति है संस्कृति दी जड़ा पहचान है या आने वाली जड़ा पीढ़ी है तिना तक अपनी जड़ा छाव है से छोड़ी करी जाती है कि शहर का जड़ा पर्व है से अहां कई बनाते कने किस तरीके ने शहर का पर्व जड़ा है से अहां जो एक दूए ने जोड़ी कर रखता है या मिट्टी दी जड़ा खुशबू है मिट्टी दी देन भी अहां वास्ते बड़ी ज़्यादा है क्योंकि मिट्टी जड़ा है से अहां वास्ते हर दिन कुछ ना कुछ जड़ा है से जरूर दिंदी है कने अहां भी अपनी जड़ा फसल है जड़ा मौसम दे अनुसार अहां फसल जड़ा है से उगांदे न कने तिदा जड़ा मेहनत दा फल है से अहां जो जरूर मिलता है तो इसी कने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो फ्री ते थोड़ा दिया अगे बढ़ांदे न कने तुहां तक अगली जड़ा फरमाइश है से पहुँचाते हैं तो हाँ भी जरूर इंतजार जड़ा है से करा दे उन्हें कि अगली फरमाइश तो हाँ तक कालू दिया पुजती है इंतजार दी जड़ा घड़ी है से बिल्कुल खत्म है
1: सुनाई आज फिर आप

कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहा तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। इसी कन्ने श्रोता जेड़ा न सियाह तक फरमाइश अपनी जेड़ा से जरूर भेजा देना व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना दी फरमाइश भी जरूर अहां तिना तक पहुंचानी है। कन्ने श्रोताओं तो सारे भी फेसबुक लाइव भी जरूर अहां जो दिखा दियो ने न जितने भी लिसनर हैं तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्ने तुहां जेड़ा कल्ले दा पर्व है, सैर दा जेड़ा पर्व है, उस दिया तैयारी च जरूर लगे होने न। कने तो हाँ भी जरूर अहाँ जो कमेंट करी करी दसी सकते कि किस तरीके ने तो हाँ अपनी जेड़ा सैर पर्व दी जेड़ा तैयारी है से करा दे न। कने इसी कन्ने तो हाँ सारे जो भी गुंजन परिवार दी तरफ ते एडवांस ही सैर पर्व दियाँ ढेर सारी शुभकामनाएं उन। ये जेड़ा त्यौहार हैं से हमेशा इन्हें चलते रहे न। कने अहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी तिना तक भी जेड़ा ये पर्व हैं इन्हें पर्व का जेड़ा क्या मतलब है या क्या जेड़ा ये पर्व है ना जो सिखाई करी जानते न या कुछ ना कुछ अहाँ जो अपनी संस्कृति कन्ने अहाँ दे जेड़ा रीति रिवाज हैं तिना कन्ने जोड़ी करी जेड़ा इसे अहाँ जो रखते न। तो ज़रूर तो हाँ इस पर्व जो इंजॉय करा कन्ने जितनिया भी खुशियां न क्योंकि खुशियां जेड़ा न अपने कन्ने ही जेड़ा इसे अहाँ कुछ ना कुछ तिना जो अपने अपने का साथ होंदा है तो तिना कन्ने

इसी कन्या हम अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते इन्हें कन्ने गल बात मैं करा दी थी कि जेड़ा श्रोता न सभी जरूर अह तक अपनी फरमाइशा जेड़ा न से रखते न तो यह फरमाइश अह तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का ना वे अश्विनी जी तिना तक अह पहुँचा देने प्यारा दिया गीत कने से रहने वाले न योल कैंट ते तो जरूर तुह सारे भी इस गीत जो इस फरमाइश जो इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे इस गीत जो इंजॉय करा दे चंबा आर की नदिया पार तो जरूर तो हाँ इस गीत जो भी जरूर इंजॉय करा दे उन्हें कने तो सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तो तक रहा है 2-3 बजे तक। फिर तो सारे जो इस सैर पर्व दियाँ ढेर सारी शुभकामनाएं इसी कने तो अपना जेड़ा पर्व है हंसते रहा मुस्कुराते रहा कने अपने कने जरूर इंजॉय करा। इसी कने अपनी रेडियो 2 शशि जो दिया।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब।
5: हाँ?
2: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: अरे सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
6: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
7: बेटा टीवी है उसको।
6: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
7: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
6: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
7: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
8: अर्जुन
7: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
9: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
10: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
11: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उड़ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
11: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
12: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
11: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
12: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
13: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
12: बस हो गया।
13: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
14: हेलो
15: राजेश जी,
8: मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: किससे?
8: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
14: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
14: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
8: अरे
1: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
15: RBI कहता है
16: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
17: कैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
18: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
17: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। फिर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
18: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
17: हाँ, हो गया। हाँ, देखो क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली? हाँ कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब।
5: हाँ?
2: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: हेलो
10: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
9: फिर से?
10: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
11: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
9: सर इतने कहाँ से?
11: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
10: 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
9: 2,00,000
12: क्या हुआ पापा?
9: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
10: अरे
9: काट दिया।

0: दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे।
1: oh, no.
0: मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की दिखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक विचार नहीं हुआ मेरा,
2: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
0: हाँ देखो क्या हो गया।

नमस्ते नमस्कार सभी जो मेरा प्यार भरा नमस्ते हा क्या हालचाल श्रोताओं तुंद है। उम्मीद करनो सभी रे हालचाल बिल्कुल फिट एंड फाइन भूने न और खरे खरे भूने न अपने घरे भूने न। आउ तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर भुचगो कार्यक्रम लेकर तुंद अपना सभी रा पसंदीदा कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा इंदी अपनी गप्पा अंदर जितने भी श्रोता इस समय बन रहे सभी का बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन। तो ये श्रोता हूँ कार्यक्रम में अब प्यारे दे टॉपिक तो है हमेशा लेकर ही भी इंदन और आज भी लेकर आए ना, लेकिन पहले कार्यक्रम रा आगाज कर लेंदे ना, कार्यक्रम री शुरुआत कर लेंदे ना इस प्यारे दे गीता सोगे।

रेडियो गुंजन धर्मशाला हा और आऊं तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूरा। श्रोताओं आजकल जो इंदा टॉपिक आ सोहा कि मिट्टी रे भांडे अंदर आजकल कड़ी है खाना खंदर वैसे है ना। बहुत कम इंदा धर्मशाला अंदर ही बड़े काम ग्राम बुने कि कसकी ग्राम अंदर रे एह एरन की इड़ी खाना खाओ कर देन मिट्टी रे बर्तन अंदर बड़ा घाट मुना शोतो। लेकिन क्या तू वो पता शोतो मिट्टी रे बर्तन माँ खाना पकाने था असू आयरन कितना ज्यादा मोलदा शोतो कैल्शियम कितना ज्यादा मोलदा ये सब चीजा मिलदी ना। और इंदा शरीर की आ कई प्रकार रे रोगा थो भी बचदा हा। बहुत सारे प्रकार रे ऐसे रोग न जिया थो अगर एह मिट्टी रे बर्तन में खाना खान तो सो रोग असू ना लगी सकदा है सुरक्षित रह सकदन। गल बात और कर ले हुन देन शतों एक गीत

0: शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम सचिन कपूर सोगी होनु करते हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने वेडियो सेट मा 91.2 MHz पर अगी तरह इंजॉय तो है सब करू कर देन की तरह मनोरंजन की असो तो है सब करू कर देन अशो तो बिल्कुल विशेष गल अगी तो है सब इस नंबर मंच कॉल कर सकते हैं और कॉल करी करे अपना पसंदीदा गीत के श्रोतों सो हो सकते हैं और अपने क्षेत्र जानकारी की असो साझा कर सकते हैं। यह गलर विशेष ध्यान रहे श्रोतों जानकारी की असो साझा करने लायक जरूर भुआ जानकारी किया सो दसने लायक जरूर भुआ श्रोतों। आइए जी कार्यक्रम जो हगो बढ़ेंदे हैं और कार्यक्रम मंच धर्मशाला रो मौसम जानी लेंदे इस वक्त की दसना चाहता श्रोतों अज धर्मशाला में काफ़ी मतलब दुए टाइम दुई बजे बाद ढाई पौने त्राई त्राई बजे रे करीब की सो बरखा काफ़ी भोई हा श्रोतों और इस समय तापमान रे गल करूँ तो अगर खन अगर खा 17 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की सो तापमान बन रहा हा श्रोतों और नमी री गल करिए श्रोतों तो नमी कर खन अगर खा 80% रे आसपास किया सो नमी भी बन रही हा। ता ये है धर्मशाला रा मौसम जो है तुसो की शेयर करो बाकी इन दे श्रोतागण के ने सो असो की लगे हिन श्रोतों कनेक्ट भूना तो इन्हें सभी श्रोता के असो असो की कनेक्ट जरूर भूना हा और असो भी कोशिश करनी है कि फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो लाइव इन और अपने बाकी श्रोता जो भी किया सो जरूर फेसबुक रे माध्यम तो वह है कि ना सो लाइव इच करी थोड़ी बहुत जानकारी कहने सो दे सकन और श्रोतों जानकारी रे पिटारा किया सो खोल ले सकन। बहरहाल सचिन कपूर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर तुंदे वीडियो सेट में हाजिर बछूरा हा तो बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन मौके सभी हुणने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा होप्सो तो सब खरे भूणे अच्छे भूणे और तंदुरुस्त भूणे हैं इन दे श्रोतागण असू के बिल्कुल कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बलुंदन और कड़ी थों बलुंदन। नमस्ते जी।
1: हेलो सचिन कपूर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बढ़िया जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन। हाँ जी लच्छी राम जी धर्मशाला के चारी थों बोलूं कर देन थोड़ी के रेडियो सेट रे आवाज धीमी करी दिया जी हस वो डबल होने कर दिया। लच्छी राम जी बिल्कुल जीरो करी दिया बिल्कुल जीरो करी दिया है ना जी हस वो डबल आवाज होने कर दिया। हाँ जी बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बढ़िया लच्छी राम जी है ठीक ने तो ये दस कुछ नोयता जी अपने अपने ग्रां रे हाँ बरसात तो काफी है। अच्छा लच्छी राम जी कुन दिन गीत सुनना पसंद कर ले कमल नहरी रे भाग सुना गाड़ा ठीक है जी जरूर ठीक है जी जरूर होने ले। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब भी ट्यून कर रो और कार्यक्रम आर जे सचिन कपूर सोगे बिल्कुल लाइव होने करते हैं तो सब श्रोता भी असोगे कनेक्ट हो सकते हैं जुड़े सकते हैं 708-8-8-709 पर कॉल करे और अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते बहरहाल इन अगले श्रोता भी असोगे कनेक्टेड हैं कनेक्ट कर दें। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते बहुत बढ़िया जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन बगेड़े थों क्या ना जी तुंदा ना के तुंदा जी गुगलू अच्छा गुगलू जी क्या कर देन तो है क्या कर देन गुगलू जी तो है
2: बस लोग सुनी है
0: अच्छा
2: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी कुंडने गीत तो होना पसंद कर ले।
2: हेलो
0: गुगली जी आवाज नहीं छू करती है तुंदी। माफ करे श्रोतो, डिसकनेक्ट करना पे और थोड़ी के लाइट भी गए सो इंदे स्टूडियो री चली गए श्रोतो, तो वापस फिर तुस होगी रूबरू हुंदे इन जी ते करे लाइट इन दे फेसबुक रे माध्यम तो फिर रूबरू हुंदे इन श्रोतो और मुलदेन थोड़ी देर बाद। तो सब श्रोता बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सोगी और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा जो हम होस्ट करूँ करता हा श्रोता हूँ तुंदे सभी रे रेडियो सेट पा वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। तो कुछ एक खास जानकारी जो असू तुस होगी जरूर शेयर करनी न साझा करनी न और आइए धीरे धीरे जानकारी रा पिटारा की असो खोल दें छो। तो कांगड़ा मकर खनगर का जो हम तुसो दसना चाहता अस्पताल में कि सो 22 विशेषज्ञ डॉक्टर जी बिल्कुल धर्मशाला तो लेकर पालमपुर तक की अशो तो सो चमकी कर खनगर खा स्वास्थ्य सेवाएं का जो कि हर कोई रील पाव करता तो शो तो हर कोई कि असो न्यूज़ इच्छु कर दी थी तकर खनगर खा शो तो अब है जो सूखा तो कांगड़ा में डॉक्टर रहा सोकर खनगर का भरी हुआ जिला वे सरकारी अस्पताल भी तस्वीर के सो बदल दे नज़र इच्छु कर दिया इलाज में के सो बेहतर सुविधा भी मिलने हैं ऐसा मानना है। पूरी जानकारी है तुस हो गया है ज़रूर शेयर कर दें इन श्रोतों। कांगड़ा जिला वे सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की भी कमी वे बीच स्वास्थ्य विभाग है कि ऐसो पीजी और सीनियर रेजिडेंस पूरी करने वाले चिकित्सकों भी तैनाती वे आदेश जारी करी दिते हैं। शोधों ठेरे तहत जिला रे विभिन्न नागरिक और क्षेत्रीय अस्पताल में 22 विशेषज्ञ चिकित्सा के ऐसो अधिकारियों जो तैनाती किया सो दे गए है। शोधों नई नियुक्ति थो धर्मशाला पालमपुर नूरपुर कांगड़ा नगरोटा भगवान शाहपुर और देहरा समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थान में विशेषज्ञ सेवाओं जो मजबूती मिलने भी उम्मीद हास होता हूँ। जोनल अस्पताल धर्मशाला में एमओ इमरजेंसी मेडिसन अभी डॉक्टर अरुषि चौधरी क्या बात है एमओ इमरजेंसी मेडिसन री डॉक्टर अरुषि चौधरी है ना जी एनेस्थीसिया वे डॉक्टर अभिनव मकड़ नेत्र रोग विशेषज्ञ क्या बात है डॉक्टर अन्याय और रेडियो विभाग रह शतों रेडियो डायग्नोसिस रह विशेषज्ञ हविष्यत कश्यप री तैनाती किया सुबोह हर्षतों तिन्यो हक्रीमा दिक्कत या हकरी जिल मिलंदी इन हकरी में कुछ दिक्कत इच्छु कर दिया तो सो अब जोनल अस्पताल धर्मशाला खींची सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनन्या बुझ सकता है गलत प्रिंट मुझे लगता कि बछूरा है अनन्या बुझ सकता है यी नेत्र रोग भी विशेषज्ञ अनन्या है और मेडिसन रे अरुषि चौधरी है ना जरूर तो सब कहने सो याद है जरूर रखने सो तो बहरहाल ये जानकारी है बिल्कुल अपने फेसबुक रे माध्यम तो भी कि ऐसो जरूर देना चाहता इन शो तो कजो कि गीत संगीत हम हमेशा बोलता कि इस कार्यक्रम रे चलो माध्यम है जो कि गीत संगीत होना लेकिन ये जो लोकल जानकारी हीन हम हमेशा दसनो और कभी कभी अपने श्रोता तो पूछ भी लगता कि इस कार्यक्रम रा मेन मोटिव क्या अगर मेन मोटिव ये किया है अपनी जड़ा सो की जुड़े रहन अपनी संस्कृति सो की इन्हें आड़े बच्चे के सो जुड़े रहन श्रोतों और दूआ मेन मोटिव ये भी हा कि यह जो अपने डायलैक्ट में किया सो जानकारी किया सो प्रदान करने की कोशिश करते हैं ताकि इन सियाने जो भी पता लग अच्छा इन जो सियाने इन घरे तीनों भी पता लगेगा अच्छा जो घरेलू इंदी बहनी हीन इंदी माताएं हीन तीनों भी पता लगेगा अच्छा और अन्य सभी पता कि ऐसा लगेगा अच्छा। बहरहाल ये जानकारी तुसु तक जरूर पहुंचाना चाहता अक मौके फिर कांगड़ा जिला वे सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा भी कमी रे बिच की ऐसा स्वास्थ्य विभाग है कि पीजी और सीनियर रेजिडेंस पूरी करने वाले चिकित्सकों भी तैनाती व आदेश के ऐसा जारी करी ताशतों तेरे तहत जिला रे विभिन्न नागरिक और क्षेत्रीय अस्पताल में 22 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी जो तैनाती किया सो दे गए हैं। सोतो 9 नियुक्ति थों धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कांगड़ा, नगरोटा, बगवा, शाहपुर और देरा समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ सेवा जो मजबूती मिलने भी उम्मीद है। सोतो जोनल अस्पताल धर्मशाला में एमओ एमरजेंसी मेडिसिन अभी डॉक्टर अरुषि चौधरी भुणे हैं और एनेस्थीसिया अरे डॉक्टर अभिनव मकड़ भुणे हैं। नेत्र रोग यानी कि हाकरी आड़े के जिन्हों हाकरियाँ लगते थोड़ी करी दिक्कत, सो विशेषज्ञ भुणे हैं डॉक्टर अनन्या और रेडियो डायग्नोसिस विशेषज्ञ भुणे हैं हर्षित कश्यप भी तैनाती की असो भोई हर्षोतों। और जिला वे दूजे बड़े अस्पताल में के असो चारोरी विभाग में एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर ही सेवाएं के असो प्रदान करू कर दे थी है। जत्थों त्यार अवकाश और इमरजेंसी सेवाएं होने पर कार्य पूरी तरीके हो गए असो प्रभावित बुचगछु कर दे तो अब आका को और तैनाती मिलने थो स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप थो कि असो चली सकदी। तटीय शोतों गल करूँ टांडा में भी कि असो कुछ एक तैनाती के असो जरूर हुई हिन जानकारी रहा पिटा रहे हैं चलते रहना इन श्रोता 8 मिस कॉल है बुझे कॉल करू कर देना। चलिए अब वह जानकारी हूँ हमेशा बोलता कि इस कार्यक्रम रहा मेन मुद्दा कर खन कर का जानकारी भी हाँ जो जानकारी इन श्रोता तक की असो अपने गद्याली डायलैक्ट में कि असो पुजा श्रोतो है ना। मेन मोटिव पहला ये भी है और दूसरा श्रोतों में भी है कि अब अपनी बोली होगी अपनी संस्कृति होगी कि इनसो जुड़ी रहना है ना। तो चलिए जानकारी यहीं चलती रहनी हिंद श्रोतों हिंद है श्रोतागण असोगी कनेक्ट बुझ गए पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार भाई जी।
0: नमस्कार जी। वीडियो सेट रही आवाज़ धीमी करी दिया जी।
3: भाई जी गाना सुनना हर
0: उसका। हाँ जी हाँ जी वीडियो सेट रही आवाज़ धीमी तो करा जी बिल्कुल फरमाइश पूरी कर ले।
3: हाँ जी
0: अच्छी कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन
3: भैया बोला है
0: तपुवंत तो कौन बोलूं कर देन जी
3: भाई बोबी।
0: हाँ जी
3: बोबी बोबी भाई
0: बोबी भाई थोड़ी रेडियो सेट रे आवाज़ धीमी करी दिया या रेडियो सेट तो थोड़ा करे कि असो अपना दायरा के असो बढ़ाई लिया है ना। बिल्कुल तो है आई थिंक रेडियो सेट सो कि सो सोगिन चिपकुरे सू के सोड़ी आवाज इच्छु कर दे थोड़ा माइंड के सोई लगे छुंदा इंदा।
3: अच्छा भाई जी बंद ही करते भाई जी।
0: हां बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज इच्छु कर दे फिर तुंदी। बोबी भाई क्या करते हैं तू है
3: भाई? मैं मैकेनिकल काम करता हूं।
0: क्या बात है मैकेनिकल इंजीनियर ने तो है।
3: क्या करना भाई तुम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बोबी जी कौन देने की थोड़ा पसंद कर ले
3: भाई?
0: ईशांत भारद्वाज रा रहे हैं तेरा मेरा लगन ता जैरी जैरी रा कहना सेरा राज जैरी रा
3: अच्छा सॉरी भाई।
0: चलो ठीक है जी जरूर हूं ले तुसु तेरे मेरा लगन।
3: ठीक है भाई
0: ओके जी धन्यवाद। अगले श्रोता सो गए कनेक्टेड हिन श्रोताओं जानकारी रहा पिटारा की असो ये चलते रहना आर जे सचिन कपूर सो की तो सब इस समय बन रहे हैं। नमस्ते जी।
4: क्या हाल जतन भाजी?
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो दस सतन के हाल ना। हेलो हाँ जी तुंदे के हाल चाल ना जी?
4: बढ़िया जी बढ़िया ते होना
0: बढ़िया जी। कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन?
4: ओह तुम राणे थों बोलूं देन
0: शक्या ना जी तुंदा।
4: हेलो
0: हाँ जी नरवाने थों कौन बोलूं देन जी क्या ना तुंदा?
4: मेरा लालू बोलूं दा।
0: अच्छा और लालू जी ठीक ठाक?
4: बढ़िया तो है होना
0: बढ़िया लालू जी। अच्छा, लालू जी की जाए धारा के नोई ताजे धारा रे
4: ਬਰਕਾ ਵੱਜਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਏ ਰੋਤਾ ਜੀ ਨਾ।
0: ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਗਰਾਂਦ ਵੀ ਆ ਬੈ
4: ਚਲੋ ਹੈਰੀ ਸਗਰਾਂਦੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਬੂਨ
0: ਹੈਰੀ ਦੀ ਸਗਰਾਂਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਬੂਨ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਲੈ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਹੋ
4: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਲਾਲੂ ਜੀ ਕੁੰਦਣ ਗੀਤ ਹੁਣ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਮੰਚ
4: ਦਾਣਾ ਹਲਾ ਦਾਰਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋਰੇ
0: ਧਾਰਾ
4: ਸੁੰਗੜੇ ਸੁੰਗੜੇ ਲਗੂਰਾ
0: ਧਾਰਾ
4: ਆ ਸਿਸੁ ਦਾਣੇ ਲਗਾਣਾ
0: ਸਿਸੁ ਦਾਣੇ ਲਗੀ ਤੇ
4: ਆ ਧਾਰਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋਰੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਲਗੂਰਾ
0: चलिए ठीक है जी, हाँ जरूर सुन ले तो सुनो जी।
4: ठीक है जी,
0: ठीक है,
4: धन्यवाद
0: धन्यवाद। चलिए शोतों जानकारी रा सिलसिला, जानकारी रा पिटारा की सोए चलते रहना। हाँ शोतों बने रे आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे। फिलहाल है पूरा करते चलते हैं फरमाइशा।

ਸ਼ੋਤੋਂ ਕਾਰਿਕਰਮ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਕੇ ਅਨਸੋ ਤੋਂ ਹੈ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਉਂ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੂਆ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਸੈਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जी बिल्कुल ये बड़ा शांत वातावरण थो ये बड़ा प्यारा वातावरण थो और इस वातावरण में जड़ी संगीत री जड़ी संगीत और डांस रे ना पर गया सो भंग चर्स अफीम चिट्टा गांजा चालू करता हा ये धर्मकोट अरे गल हा शोतों जी बिल्कुल पहले अपर भाग सो और अब है धर्मकोट ईडीएम होटल में अब रेब पार्टी चल रही थी और पूरी जानकारी है तो उसको ये गल भी बिल्कुल शेयर कर ले साझा कर ले और इतना केवल आऊँ तुसको दसना चाहता कि सरकार या पुलिस सी की या सो मददगार असफल है इस समय हर प्रत्येक नागरिक जो कि जिस प्रकार हो गए इस समय सरकार सुके नशे के खिलाफ जंग लड़ू कर दे हा पुलिस अपना कार्य कर दी है तीन अक आम नागरिक जो भी किया सो अपना कार्य करना पैना है जड़ी भी तुसो इस प्रकार रह के ना सो कट्ठिए भी हो जे गंदे ने सुके नशे करने वाला है तो तीनों जरूर पुलिस जो कि सो इन्फॉर्मेशन दिया सो तो बहरहाल इस गीता जो कर लेंदे पूरा और फिर पूरी जानकारी तुसो होगी किया सो शेयर कर देन साझा कर दें।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ कार्यक्रम आज सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने अपने वेडियो सेट में तो श्रोतो तो सब कनेक्ट जी बच्चों कर देन ते बुझ सकते हैं 7018817091 पर नंबर अक मुके फिर की सो तुस हो गया शेयर करनो साझा करनो 7018817091 पर चलिए तो अगली जानकारी होगी तुस वो रूबरू करवंदे हिन शतो ये वाके में ही एक खूबसूरत वादी हिन धर्मशाला री इडी इन्या खूबसूरत वादी जो हेरने वास्ते के श्रोतों सो हजारों लख मनु के सो इंदे हिन लेकिन श्रोतों दुखता ने लगता है जहाँ इन्या खूबसूरत वादी में किया सो नशे रे हिला जहाँ नशा किया सो सुखा नशा आखिरकार जहने बड़े गंदा हा और इंडिया वादी जो खराब करता हा हिमाचल जो खराब करू करता हा धर्मशाला जो खराब करू करता हा ये जानकारी तुस हो गया है शेयर कर दे इन श्रोतों। धर्मशाला मैकलोडगंज वे शांत वादी में संगीत और डांस व ना पर रेप पार्टी वी आड़ मा किया नशे और अन्य अवैध गतिविधि व खेल सामने इना लगो हा श्रोतों। 3 अगस्त जो अपर भक्सु नाग वे जंगल कॉलिंग कैफे में वे पार्टी थों चिट्टा चर्स गांजा और बिना लाइसेंस शराब बरामद भुने रे बाद अब है अपर धर्मकोट रे ईडीएम होटल मा किया सो पुलिस है दबिश करी श्रोतों और इस पूरे मामले जो किया सो और गंभीर किए करें मामला बनु श्रोतों। दोनों मामले में पुलिस है कि सो चोर मनु जो किया सो चोर आरोपी जो किया सो गिरफ्तार करो हा श्रोतों और नशे मंच की थी है नशे तुसु सभी दसना चाहते हैं इन श्रोतों किन्दे अगले श्रोता फिलहाल कनेक्टेड हिन यह जानकारी जो पूरा कर लेंदे जिंदे सो कनेक्ट भुनते हिन तो श्रोतों नशा तड़ी भी चलू करता थो सुखा नशा तड़ी भी किया सो बुरे हालियाँ बलना चाहता कि चलू करता थो श्रोतों और इसी सो की श्रोतों दोनों मामले में पुलिस से किया सो चार मनु जो आरोपी जो किया सो बंदी बनाऊ हा नशे भी पार्टी वे प्रचार प्रसार और आयोजन रे तौर तरीके भी किया सो जांच शुरू करी है श्रोतों पुलिस से पुलिस री औरतों की सो जांच हगू बड़ू कर दे हा नशे व तस्करा व अन्य अवैध गतिविधि जो लेकर किया सो जांच पड़ताल चालू कर दे हा श्रोतों। गीत संगीत व डांस रे ना पर सेक्स रैकेट चलाऊ कर दे थी है श्रोतों एवं पुलिस से किया सो जाँच भी सुई पुलिस जो किया सो जाँच भी मतलब खबर मोड़े सोई मोड़े और इन्हें के सो एकदम से वो फिर बिल्कुल तड़ी गिजिगरी के सो दविश करी शतों। 3 अगस्त जो पुलिस से किया सो जंगल कॉलिंग कैफे में भी 25.94 ग्राम चर्स 8.25 ग्राम चिट्टा और 5.35 ग्राम भंग रे पत्ते नशीले पदार्थ रे पैकिंग सामग्री और बेर रे 19 कैन बरामद करे थी और ये नशे रे कारोबार के लगातार बड़ू करदा हा धर्मशाला मैकलोडगंज भागसू नाग इन्या जगह में श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे हिन और अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी। हेलो हाँ जी नमस्कार जी अच्छी कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो बोल रहे पफ करे जी तुंदे आवाज नहीं चुगर दी तुसो डिस्कनेक्ट के सो करना पैना हा तो शो तो आए गल करो करते थे कि किस प्रकार हो कि सो नशा बिल्कुल बड़ू करता हा जो कि यूथ वास्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है श्रोतों। बलदेन हर देश री वीड़ री हड्डी की असो यूथ बुंदा हा नौजवान बुंदा हा और अगर नौजवान की असो इस प्रकार सुगे अगर सूखे नशे भी चपेट में की असो इच्छू करता हा लगातार तो करखन अगर खास सभी वास्ते पूरे इंडिया वास्ते श्रोतों हिमाचल वास्ते और इवन की सभी वास्ते किया सो करखन अगर खा दुखद अक गल हा। बहरहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे नींद अगले श्रोता सुगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार क्या हाल चाल ने?
1: बस ठीक ठाक है तो हमारा
0: बहुत बढ़िया जी आशीर्वाद है तुम्हारा सभी रा प्यार है
1: अरविंद का प्यार तो रहना ही
0: बस सोई चिंता जी
1: कमलेश कपूर गुरु ना खने रहे हो।
0: अच्छा कमलेश कपूर जी खने आ रहे थे बल्लू गर्दन बड़ी हसीन वादी ने खने आ रहे री भी जी अपने आप में खने आ रहा बड़ा कुछ दर्शनदा ठंडी हवा ठंडा पानी ठंडी बरखा इवन की हम सच बोलू करता जो मनुख ने आ नगो सो धर्मशाला में खड़ी ने घूमू
1: खनियारा बड़ा खनियारा जी खनियारा बड़ा नियारा
0: खनियारा बड़ा नियारा वाकई में इड़िया रा क्लाइमेट ही पूरे धर्मशाला तो अलग है तूने करे एरिया रा के ऐसा क्लाइमेट ही बड़ा बड़ा प्यारा बड़ा सुरीला बड़ा नियारा
1: सच्ची जा गल हो रही है ना खनियारे इतना बड़ा बिजनेस मिल रहे है आ रहा है
0: जी बहुत एशिया की सभी रिच पंचायत थे जनाब ये खनियारा
1: रिच पंचायत थी पर ऐसी लूट घसीट ही थी पहनना पे भी कसी चोरी डाका ये सब से चोर उन सोना हो गया जाते फिर कोई नहीं है ना ये बढ़िया खासियत है फिर खनियारे की
0: वाकई में
1: अगर ना से लोरे घर पर वाकई हम जा रहे हैं ना तो सब इच्छुक रहो घर का बच्चा है
0: ये तो इच्छू कौन करता ये तो बारह थो इच्छू करता जनाब पर चक्कर है कि यार कि दिन प्रतिदिन की सो बड़ो ही करता है ना नशा की सो सुखा नशा खास कर रहा पुराने बुजुर्ग शराब पींदे थी है ना चलो बराती भी गंदे थी है बह घर जंदर शराब भी पींदे थी है ना लेकिन आजकनी डेट में सो शराब तो मतलब कखा दूर दूर तक नहीं आ इस सुखे नशे इतनी हद बेहद करू कर देन कि जनाब इन्हें वाली जनरेशन तो टोटल इन लगू कर दा कि खराब है
1: ऐ सब मुझे लगता कि न्यू जनरेशन जड़ा 16 लेकर 30 साल तक तो बर्बाद हो जी है पूरे
0: बहुत बर्बाद है बहुत ज्यादा
1: सचिन जी गाना सुनना तो कोई भजन सुनना जी
0: जी जी बल्ले कुंडी ने सुनना जी
1: ज्वाला रानी आ गई कांगड़े दे मोड़े मोड़े
0: ज्वाला रानी आ गई कांगड़े दे मोड़े मोड़े चलिए ठीक है जी जरूर होने ले
1: ठीक है धन्यवाद
0: धन्यवाद जी श्रोतों अगले श्रोता सो गए कनेक्टेड हिंद तो सब बन रहे हैं इस समय आर जे सचिन कपूर सो की विनय कपूर जी सो बिल्कुल लाइव है रुगरदेन फेसबुक रे माध्यम थो हर हर महादेव विनय भाई हर हर महादेव चलिए चल दें श्रोतों और अगले श्रोता सो कनेक्ट कर दें हिंद नमस्ते जी
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी
2: नमस्कार जी
0: नमस्ते जी
2: और क्या हाल है थोड़े
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया
2: सचिन जी वैज कोई गणेश का भजन होना चाहिए
0: अच्छा
2: हाँ जी टाइम थोड़ा ही रहा
0: हाँ जी बिल्कुल
2: क्योंकि और ना भी टाइम चाहिए
0: जी बिल्कुल
2: हाँ जी ठीक है ना क्योंकि ज्यादा बोल गया था टाइम खत्म है हाँ जी तुम्हें पता ही है
0: धन्यवाद श्रोतो तो सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सो के और कार्यक्रम हूँ करते हैं इंदी अपनी गप्पा तो चलिए चल दिन और गीत है भी तू सुखी सो जरूर हूँ दे हिन श्रोतो बिल्कुल इस गीत का आनंद लेंदे हिन रेडी गुंजन धर्मशाला में 91.2 मेगा हर्ट्स पर तो सब बन रहे और आर जे सचिन कपूर जो कि श्रोतो सो हूँ करते हैं तो चलिए आनंद लेंदे हैं इस प्यारे दे गीतरा तुंदे सभी रे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच बने रहा जुड़ी रहा हुणदे रहा तुंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला अश्वनी सुकेतिया जी नमस्ते सभी जो नमस्ते चलिए फिलहाल इंजॉय कर देने इस प्यारे दे गीत जो तुंदे सभी रे रेडियो सेट में गाने रे बोल इन श्रोतों पिंक पलाजो जी बिल्कुल और सारला ढांगी और किशन वर्मा ए प्यारे दे गीत किया श्रोतों सो गुनगुनो रहा इंजॉय कर देन वीडियो सेट में इस प्यारे दे गीत जो

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और एक कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा कहने से चल रही इन शो तो आइए जी कार्यक्रम मंच तो ऐसा बार जैसे सचिन कपूर जो बिल्कुल लाइव किए सो हूँ करते हैं इन शोतों और इन दैक श्रोता है ना जो कि फरमाइश करो कर दिन कि पंजाबी गीत हुनाई दिया था आऊँ तीन या दसना चाहता कि चौथों पंच इन कार्यक्रम के सो इन लोकल डायलैक्ट के दयाली डायलैक्ट जो समर्पित था छिया थों अट के सो इन गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम चलता जो कि हिंदी और लोकल जो इन जानकारी हिन जो राज्य स्तरीय जानकारी हिन जो राज्य स्तरीय जानकारी हिन और जो लोकल धर्मशाला भी जानकारी सो एह तुसु तक के सो पहुँचन दे हिन सो हिंदी में किया सो ब्रॉडकास्ट बुंदा और ततिमा कुछ एक गीत के अनुसार पंजाबी होना ही सकते हैं पर बहरहाल ये चूरथों पंचता बिल्कुल इन द जो गदयाली डायलैक्ट आ इन द गद्दी बोली है तथियो समर्पित था और तथि वास्ता ये हा और आऊँ इतने साल थों इतियो ताई होस्ट करूँ करदा हा बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हैं इन श्रोतों और दसना चाहता धर्मशाला अस्पताल जो किया सो 28 लाख रुपये और मोड़ो हा जोनल अस्पताल धर्मशाला रे भवन रे मरम्मत और सुविधा जो बेहतर करने वास्ते हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालय भी औरतों करीब 28 लाख रुपये राति अतिरिक्त बजट के असो जारी हुआ हाशतों इतिमा करीब 22 लाख रुपये लेबर रूम समेत अस्पताल रे आईपीडी अन्य हिस्सा मंच किया शोतों सो खर्च भूना है जबकि 6 लाख रुपया पुराने हाल री मुरम्मत रहवास ने किया सो स्वीकृत भूना है शोतों जोनल अस्पताल धर्मशाला भी चिकित्सा अधीक्षक एमएस डॉक्टर अनुराधा शर्मा बल्लो आशोतों की मुरम्मत कार्य पूरा होने थो बाद भवन री स्थिति में सुधार होना है और मवीजा तथा जो मवीजा सोगी अटेंडेंट बुंदे हिन तिन्या जो बेहतर सुविधा किया सो मुड़े सकते हा 28 लाख रुपये लगो करता ताऊ जनता जो जरूर जानकारी हो गया अवगत करवाना चाहता हा कि 28 लाख रुपया के अस और लगो करता हा लख और पहले लगी छू रहे बहरहाल इन अक्षोतन तैयारी फरमाइश कर देन पूरे गणेश जी का गुणगान

0: चलिए श्रोताओं, सचिन कपूर अबे तो सुतों ले लेनो इजाज़त। और गंदे गंदे बस सही बोलना चाहूँ श्रोताओं की माँ बाप री सेवा ज़रूर करा और हर कसीरा भला किया श्रोताओं से ज़रूर करा कर जो कि ऊपर की चिकर किया सुकर्मा रा हिसाब बुना जो किया है सब बाखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस मुँह माया रे चक्र मंज किया सो बोले गंदे कि हिसाब ऊपर पैसे रबूना हाँ। तो बहरहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेने तो सुतों इजाज़त, हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे और आर जे सचिन कपूर जो यहीं हूँ दे रहे मुल दिन छिया तो वट फिरे। गुड इवनिंग धर्मशाला मंच,
1: संगीतकार राजीव नेगी और गीत के बोल हैं झुमके झुमके।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। किशाऊ बांध पर समझौता, हिमाचल की 2000 करोड़ की बिजली लागत उठाएंगे 3 पड़ोसी राज्य। हिमाचल में इंसानी दखल और अवैज्ञानिक कटान से भी दरक रहे पहाड़। UPI से अब 2000 रुपए से अधिक बंद खरीदारी पर लगेगा शुल्क, सैलरी सिस्टम से कनेक्ट होगी शिक्षकों की हाजिरी। मुख्य समाचार, अंग्रेजों के जमाने से लटकी पड़ी किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक समझौता ज्ञापन बन MOU पर हस्ताक्षर

किए गए हैं। इस बांध से पानी का लाभ पाने वाले 3 पड़ोसी राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा मिलकर हिमाचल प्रदेश के हिस्से की 2000 करोड़ रुपए की बिजली लागत का खर्च उठाएंगे। इस वित्तीय बोझ से के कारण परियोजना शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को हर साल 1200 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ फायदा होगा। केंद्र सरकार ने भी हिमाचल के पक्ष पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के धंसने भूस्खलन के लिए केवल भारी बारिश ही जिम्मेदार नहीं है। इंसानी दखल, वैज्ञानिक कटान, कमजोर भूगर्भीय संरचना और अनियोजित निर्माण की वजह से प्रदेश के पहाड़ दरक रहे हैं। एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है कि साल 2025 में मई से सितंबर तक प्रदेश में भूस्खलन की 4644 घटनाएं दर्ज की गई। इन सभी भूस्खलन की घटनाओं में से सबसे ज्यादा घटनाएं राज्य के कुल्लू जिला में दर्ज हुई हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है। इसके तहत 2000 रुपए से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन पर 0.4% का शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा। हालांकि 75,000 रुपए से अधिक की राशि के भुगतान के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन तय की गई है। UPI से महीने में 1,00,000 रुपए तक का भुगतान लेने वाले छोटे दुकानदारों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे, बीमा, संचार और ईंधन जैसी चुनिंदा सेवाओं के लिए 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर सिर्फ 5 रुपए का फ्लैट शुल्क लगेगा। यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लाभार्थियों ए के चयन को लेकर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने यह साफ कर दिया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू हुई परिवारों की पहचान प्रक्रिया के आधार पर अब किसी भी परिवार का नाम BPL सूची में न तो जोड़ा जाएगा, उनकी स्थिति वैसी की वैसी यथावत बनी रहेगी। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक की ओर से सभी उपायुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू परिवार पहचान की पूरी प्रक्रिया को अब BPL परिवारों के चयन अथवा BPL सूची में बदलाव की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। इसके आधार पर किसी परिवार का नाम अपने आप BPL सूची में शामिल नहीं होगा और न ही पहले से सूची में दर्ज परिवार को हटाया जाएगा कि भविष्य में किसी परिवार को BPL सूची में शामिल करने या सूची से बाहर करने का फैसला ग्राम सभा के माध्यम से निर्धारित सरकारी नियमों और प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। यह प्रक्रिया 19 मार्च 2025 से पहले लागू नियमों के अनुसार होगी कि परिवार पहचान की प्रक्रिया के पहले चरण से 8वें चरण तक चिन्हित परिवारों तथा 21 अगस्त 2026 के पत्र के अनुसार अंतिम चरण में मतदार पाए जान परिवारों को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार, इसके लिए संबंधित परिवारों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रदेश के CBSE स्कूलों की सख्ती शिक्षकों पर भारी पड़ने वाली है। अब CBSE स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों का वेतन उनकी ऑनलाइन हाजिरी से कनेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई CBSE शिक्षक हाफ डे के बाद बैंक या कहीं बाहर चले जाते हैं और उनकी 3 टाइम की हाजिरी में से 1 बार भी हाजिरी मिस होती है तो उनकी वेतन सैलरी में कटौती की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने ई सैलरी सिस्टम से शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी पोर्टल को जोड़ने कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मैक्लोडगंज की प्रसिद्ध डल झील नड्डी में इस बार 18 सितंबर को पहली बार हरिद्वार की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन 19 सितंबर को राधाष्टमी के पावन अवसर पर होने वाले ऐतिहासिक शाही स्नान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मान्यता के अनुसार इस पवित्र झील में स्नान करने से चमा की मण ए महेश यात्रा के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 18 सितंबर को इस धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए टैंगल बोर्ड से डल झील तक एक विशेष एंटी चिट्टा डम्स विरोधी रैली निकाली जाएगी। शाही स्नान के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ और किसी भी अप्रिय घटना जैसे डूबने आदि को रोकने के लिए झील में गोताखोरों और SDRF की टीमों को तैनात किया जाएगा। जहरीले सांप कैस्पियन कोबरा वैज्ञानिक नाम नाजा ऑक्सियाना के काटने से होने वाली मौत भारत में पहली बार रिपोर्ट हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से मामले सामने आए हैं जिनमें 2 लोगों की मौत इस घातक विषैले सांप के डंक से हुई है। इसके अलावा 2 मामले ऐसे भी हैं जिनमें कैस्पियन कोबरा के काटने से लोगों की जान बच गई है। कैस्पियन कोबरा मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाया जाता है
लेकिन हिमाचल के चंबा जिले में इस घातक कोबरा की जेनेटिक मौजूदगी की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। चंबा के कैस्पियन कोबरा पर एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल में शोध पत्र भी छपा है।

शोतम एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए लेके चलते हैं इस गीत की ओर आप सभी को।

मैं सचिन कपूर हूं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को इस समय आप सभी के वीडियो सेट पर होस्ट कर रहा हूं। ये सिलसिला ये गीतों का पिटारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनाते हैं इसी बीच एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाचीज सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? ये उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं कि आप सभी जो है वो खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बेहद अच्छे होंगे, बेहद प्यारे होंगे और लाजवाब होंगे। ये उम्मीद हम लगा कर बैठे हैं और श्रोताओं, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद पर ही तो सबकी सुइयां जो है वो अटकी हैं। तो मेरा नाम सचिन कपूर है, गुड इवनिंग धर्मशाला को मैं होस्ट कर रहा हूँ। श्रोताओं, 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहेंगे। श्रोताओं, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा और ना ही कोई गलती की गुंजाइश हम करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। रोज़ाना रोज का दिन जो है श्रोताओं, वो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखा कर जाता है, कभी हंसा कर जाता है तो कभी रुला कर जाता है। तो हर दिन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है श्रोताओं। तो आइए फ़िलहाल आगाज़ करते हैं हम कार्यक्रम का इस बेहद प्यारे खूबसूरत से गीत के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने में, कट ही तो जाता है ना श्रोताओं, एक साथ ही तो है जो ज़रूरी चाहिए, एक सच्चा साथी जो है वो ज़िंदगी के सफ़र में जो है वो हम सभी को चाहिए होता है। वो सच्चा साथी अगर मिल जाए श्रोताओं, तो वाकई में ही ज़िंदगी का सफ़र जो है वो कुछ इस तरह ही कट जाता है जिस तरह से ये गीत जो है वो गुनगुना रहा है। ये गीत, इस गीत को जो है वो महसूस करते हैं। और आइए

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोतो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे जो है वो बढ़ाते हैं और यूँ ही चलता रहेगा कार्यक्रम। जानकारी की ओर चलते हैं श्रोतो, इस समय धर्मशाला का मौसम जान लेते हैं। तो बताना चाहता हूँ धर्मशाला में अभी मौसम मुख्य रूप से जो है वो बादल छाए हुए हैं श्रोतो, और छाए रहने की संभावना भी है। हल्की ठंड जो है वो महसूस की जा सकती है श्रोतो। तापमान की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के जो है वो आसपास है, और हवा में नमी की यानी कि ह्यूमिडिटी का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगभग 86 लगभग जो है वो 85% के आसपास ह्यूमिडिटी का स्तर है श्रोतों। तो यह इस समय धर्मशाला का धर्मशाला की जानकारी श्रोतों और मौसम से जुड़ी ये जानकारी है। अन्य और भी जानकारियां जो है वो आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए जी लेके चलते हैं इसी बीच आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

ये दुआ है मेरी रब से। वाह क्या बात है, क्या कमाल का गीत हमने सुना। श्रोतों, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। प्रदेश में 18 सितंबर तक जो है वो कमज़ोर पड़ेगा मानसून। जी बिल्कुल, बताना चाहते हैं प्रदेश में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है श्रोतों, और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बात करना चाहूँगा शिमला में भी श्रोतों, दोपहर बाद जो है वो तेज़ बारिश हुई, जैसे कि धर्मशाला में भी आपने देखा कि दोपहर बाद ही जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, जिसमें मौसम ठंडा हो रहा है श्रोतों। पिछले अगर मैं 48 घंटों की बात करूँ तो पिछले 48 घंटों में धर्मशाला में सर्वाधिक 60 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है श्रोतों। उसी तरह सुंदरनगर में 28.5 और बिलासपुर में श्रोतों 23.6 mm बारिश दर्ज की गई है श्रोतों। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए श्रोतों तो 17 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं, जबकि 18 सितंबर से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है श्रोतों। 21 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है श्रोतों। लगातार बारिश के बीच भूस्खलन से प्रदेश में लगभग 60 के करीब सड़कें जो हैं वो बंद हैं श्रोतों। इनमें मंडी में 26, कुल्लू में 14 और कांगड़ा में 10 सड़कें जो हैं वो बंद हैं श्रोतों। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 30 जून से अब तक मानसूनी बारिश के कारण प्रदेश में चल और अचल संपत्ति को करीब जो है वो 3,211 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है श्रोतों। इसी तरह से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोतों, यूं ही आपको जानकारियां आपके अपने वीडियो सेट पर मिलती रहेंगी। आप बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला है और आप सभी इस समय बने हुए हैं हमारे साथ वेडी गुंजन की गूंज के साथ। आइए शोतो उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी को लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। शोतो इलेक्ट्रिक बसें भर रही हैं खजाना सरकार का। जी बिल्कुल, पहाड़ी सड़कों पर दौड़ रही हैं इलेक्ट्रिक बसें, जहां पर्यावरण को राहत दे रही हैं शोतो। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो की आय में भी जो है वो अहम योगदान दे रही है शोतो। 13 सितंबर के दैनिक आंकड़े के अनुसार अगर बात की जाए तो कुल्लू डिपो से संचालित 32 इलेक्ट्रिक बसें सेवाओं ने एक दिन में जो है वो कुल 2700 किलोमीटर का सफ़र तय किया और निगम को जो है वो 11,566 रुपए की आय अर्जित करवाई शोतो। यानी औसतन बात की जाए तो प्रत्येक सेवा में करीब 3,608 की आय हुई शोतो। जी बिल्कुल, आप सभी बने हुए हैं वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत संगीत का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। तो चलूँ मैं कि नहीं? हाँ, चलना पड़ेगा श्रोतो, क्योंकि आप सभी को रूबरू करवाएंगे हम इस प्यारे से गीत के साथ। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। ये बात दिल पे है और दिल में ही रहेगी। बहुत सारे श्रोतों की बातें जो हैं वो दिल में ही तो रह चुकी होंगी, है ना। तो आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आप सभी अपने अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में शोतो। और तो चलूँ बिल्कुल बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना शोतो। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, टांडा अस्पताल की चौथी मंजिल से महिला ने लगाई छलांग। श्रोतों जी बिल्कुल श्रोतों, टांडा अस्पताल में जो है वो श्रोतों एक दर्दनाक घटना सामने आई। मेडिसिन वार्ड की चौथी मंजिल से 28 वर्षीय महिला ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। महिला की सोमवार रात को तबीयत बिगड़ने पर टांडा अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था। महिला ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मंगलवार सुबह 5 बजे चिकित्सकीय निगरानी के लिए उसे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। श्रोतों, इसी दौरान उसने परिजनों के सामने ही चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। परिजन और अस्पताल कर्मी कुछ समझ पाते इससे पहले ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। श्रोतों, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मंगलवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रोतों, पुलिस मामले की जांच कर तो रही है कि न जाने किस लिए चौथी मंजिल से जो है वो महिला ने छलांग लगाई और इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करते समय जो है वो महिला ने जान दी। श्रोतों, हम नहीं समझ पाते ना कि किस इंसान के मन में क्या चल रहा है, किस इंसान के जहन में क्या चल रहा है और वो किस परिस्थितियों से जो है वो गुज़र रहा है। श्रोतों, लेकिन अक्सर परिस्थितियां जो है वो ज़रूर आती हैं, ख़राब परिस्थितियां भी जो है वो व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती हैं। श्रोतों, लेकिन उन परिस्थितियों में जो है वो खुद को संभालना होता है, उन परिस्थितियों में जो है वो खुद को संवारना होता है। अक्सर परिस्थितियां जो है वो आती जाती रहती हैं, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना और उन सिचुएशन से फाइट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देना, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत चुभता है। क्योंकि देखिए, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, संघर्ष हर किसी की लाइफ में है, दुख तकलीफ़ हर किसी की लाइफ में है। ज़रा उनको देखिए जिनके शरीर के अंग भी उनके साथ नहीं हैं, वो भी बहुत खुशहाली से अपने जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने हम लोग क्यों हार जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। चलिए श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं इस गीत की ओर।

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर मेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। कांगड़ा जिला के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने पीजी और सीनियर रेजिडेंस पूरी करने वाले चिकित्सकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। श्रोताओं इसके तहत जिला के विभिन्न नागरिकों और क्षेत्रीय अस्पतालों में 22 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को तैनाती दी गई है। श्रोतों नई नियुक्तियों से धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कांगड़ा, नगरोटा, बगवा, शाहपुर और देहरा समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। श्रोतों जोनल अस्पताल धर्मशाला में एमओ इमरजेंसी मेडिसिन की डॉक्टर आरुषि चौधरी, एनेस्थीसिया के डॉक्टर अभिनव मकड़, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनन्या और रेडियो डायग्नोसिस विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित कश्यप की तैनाती की गई है। श्रोतों जिला के दूसरे बड़े अस्पताल में उक्त चारों ही विभाग में एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर ही सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जिससे उनके अवकाश या इमरजेंसी सेवाएं होने पर कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। श्रोतों अब एक एक और तैनाती मिलने से स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी, आराम से चल सकेंगी अब श्रोतों। तो धर्मशाला से लेकर पालमपुर तक चमकी स्वास्थ्य सेवाएं, जिला के सरकारी अस्पतालों की बदलेगी तस्वीर, इलाज की मिलेगी बेहतर सुविधा। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आज सचिन कपूर के साथ वेड़ी गुंचन धर्मशाला में। जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ यूं ही।
1: नाम मेरा शबनम है पर
2: तो सभी दिल जले।

जवानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन, आप सभी ने ट्यून किया है और ये नाचीज सचिन कपूर इस समय जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। बहरहाल सभी जानकारी बिल्कुल श्रोताओं की जा रही है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। धर्मशाला में किलोड़गंज की शांत वादियों में संगीत और डांस के नाम पर रेव पार्टियों की आड़ में नशे और अन्य अवैध गतिविधियों का खेल जो है वो सामने आने लगा है। श्रोतों 23 अगस्त को अपर भागसूना के जंगल कॉलिंग कैफे में रेप पार्टी से चिट्टा चर्स गांजा और बिना लाइसेंस शराब बरामद होने के बाद अब अपर धर्मकोट के ईडीएम होटल में जो है श्रोतों पुलिस की दबिश ने इस पूरे मामले को और गंभीर जो है वो बना दिया है। श्रोतों दोनों मामलों में पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बनाया है और नशे की बरामदगी के साथ पार्टी के प्रचार प्रसार और आयोजन के तौर तरीकों की भी जो है वो जांच शुरू की है। श्रोतों इसमें पुलिस की और से जांच को आगे बढ़ाते हुए नशे के तस्करों व अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है। श्रोतों गीत संगीत व डांस के नाम पर सेक्स रैकेट तक चलाए जाने के एंगल पर भी जो है पुलिस की जांच जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। श्रोतों आपको याद हो तो 23 अगस्त को पुलिस ने जंगल कॉलिंग कैफे से जो है वो 25.94 ग्राम चर्स, 1.25 ग्राम चिट्टा और 5.35 ग्राम भांग के पत्ते, नशीले पदार्थों की पैकिंग सामग्री और बेर के 19 कैन बरामद किए थे। श्रोतों तो इस प्रकार से नशा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है हमारे धर्मशाला में। श्रोतों तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस संगीत की ओर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,349 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डीएन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने

0: विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Read by...

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
5: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
5: कुली? हाँ कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
5: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
5: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब।
5: हाँ?
2: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
5: अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
6: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
7: बेटा टीबी है उसको।
6: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
7: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
6: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
7: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हा?
8: अर्जुन
7: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
9: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।
10: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकती रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दे, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
11: श्रोतो अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने ट्यून किया है, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी आप सभी के बीच में रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। लेकिन चलते हैं श्रोताओं इस जानकारी की और आप सभी को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर की कार्रवाई लगातार जारी है। श्रोताओं सी ए आई नूरपुर की टीम ने जो है श्रोताओं वो मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 6.44 ग्राम हीरोइन चिट्टे के साथ पंजाब के दो युवक को गिरफ्तार किया है। श्रोताओं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना पंजीकरण संख्या की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त की है। श्रोताओं पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई वर्ष 2026 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज सौ मामले जो हैं वो हुए हैं। जानकारी के अनुसार श्रोताओं बताना चाहता हूँ, नूरपुर की टीम ने 15 सितंबर को क्षेत्र के गश्त एवं संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी जो है वो कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना मिली की जानकारी मिली कि पंजाब से दो युवक जो है वो मोटरसाइकिल पर नशीले पदार्थ लेकर बिक्री के उद्देश्य से क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर बिना नंबर की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल को रोका और नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों युवकों के कब्जे से कुल 6.45 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद हुआ। शतों पुलिस ने नशीले पदार्थों को कब्जे में लेने के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। शतों पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंशु 21 निवासी वार्ड 31 ऊंची पुली ढांगू रोड पठानकोट तथा हिमांशु चौधरी 20 निवासी 20 साल उम्र निवासी बाढ़ 31 ऊंची पुली ढांगू रोड पठानकोट के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्रोताओं जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

तो बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला में, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर वेडी गुंजन धर्मशाला में। तो देखिए, हम अक्सर कहते हैं श्रोतों और बार बार कहते हैं कि प्रकृति की सेवा जो है वो ज़रूर करें और प्रकृति को साफ सुथरा जो है वो ज़रूर रखें श्रोतों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो ज़रूर लगाएं। इस तरह का मैसेज जो है वो मेरे लाइव शो में ज़रूर रहता है श्रोतों, तो कृपया करके ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्रकृति है तो हम सब हैं, और अगर प्रकृति को ठेस पहुँचती है और अगर प्रकृति सही नहीं रहती है श्रोतों, एनवायरनमेंट सही नहीं रहता, तो फिर कुछ भी सही नहीं है, फिर लाखों करोड़ रुपए भी वेस्ट है आपका। इसलिए प्रकृति को बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़रूर रखें और अच्छा जो है वो ज़रूर रखें श्रोतों। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो सुन रहे हैं। यूपीआई से 2000 से ज़्यादा की पेमेंट पर लगेंगे 0.40% चार्ज। 15 अक्टूबर से श्रोतों, 15 अक्टूबर से शुरू होगी वसूली श्रोतों, ग्राहक नहीं कारोबारी का कटेगा टैक्स। तो अब कारोबारी का कटेगा टैक्स, ये पूरी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लगवाएंगे दूल्हे का सेहरा।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट में। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी सुनने वालों का, जितने भी गणमान्य व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, जितने भी आदरणीय व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, जितने भी हमारे माननीय सम्माननीय व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का पुनः तहे दिल से यह नाचीज सचिन कपूर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जी बिल्कुल, UPI से 2000 से ज़्यादा की पेमेंट पर लगेंगे 0.40% चार्ज। 15 अक्टूबर से शुरू होगी वसूली। श्रोतों, केंद्र सरकार ने UPI से पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने का ऐलान कर दिया है। श्रोतों, मंगलवार को हुई UPI संचालन समिति की बैठक में 2000 रुपये से अधिक के लेन देन के लिए UPI MDR को 40 BPS या 0.40% कर दिया है। श्रोतों, जिसका मतलब है कि 2000 से ज़्यादा की पेमेंट पर व्यापारियों को 0.40% का चार्ज देना होगा। याद रखिए, व्यापारियों को ये चार्ज जो है वो देना होगा। श्रोतों, अधिसूचना के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट P2P ट्रांजेक्शन यानी कि फ़ोन पे टू फ़ोन पे ट्रांजेक्शन पर UPI MDR का नया वर्क फ्रॉम लागू हो फ्रेमवर्क जो है वो लागू होगा। हालांकि ग्राहकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपसे आपस में अगर ग्राहक जो है वो आपस में भी आप UPI के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो जो है श्रोतों आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा व्यापारियों पर ही लागू होगा। सरकार का कहना है कि नए नियम के तहत 2000 रुपये से कम पेमेंट रिसीव करने वाले व्यापारियों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ, और आइए इसी बीच में लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हवेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो श्रोतो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 7:35 हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में छोटे से अंतराल का।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
2: बच्चन जी।
1: बोलो बच्चा जी।
2: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
1: कुली थी।
2: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
1: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
1: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
2: गलत जवाब।
1: हाँ?
2: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
1: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
5: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
6: बेटा टीवी है उसको।
5: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
6: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
5: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
6: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
7: अर्जुन
6: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
8: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
9: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दे, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
10: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
10: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
11: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
10: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
11: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
12: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
11: बस हो गया।
12: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
13: हेलो
14: राजेश जी, मैं पुलिस
7: पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
13: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
14: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
15: सर इतने कहाँ से?
14: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
13: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
16: 2 लाख
17: क्या हुआ पापा?
15: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
13: अरे
15: काट दिया।
17: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
15: फ्रॉड?
17: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
15: तो पैसे गवाओगे।
18: RBI कहता है,
19: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
20: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
21: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
20: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
21: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो, ठीक हो गया।
20: हाँ देखो क्या हो गया।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फिलहाल तो श्रोतों 8:46 जो है वो हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों व युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के सहयोग के बिना चिट्टे के बढ़ते खतरे को रोकना संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से अपने दोस्तों को नशे के दलदल में जाने से रोकने और उन्हें इससे बाहर निकालने में मदद करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। वॉकाथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों व युवाओं से संवाद किया और नशे के खिलाफ इस मुहिम में उनकी भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चिट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
2: एक बार जिस प्रकार हिमाचल सरकार ने प्रहार किया, उसकी नारकोटिक्स ब्यूरो जो नॉर्थन इंडिया की है उसने बहुत प्रशंसा की है और उस मॉडल को अपनाने के लिए और राज्यों को भी बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछला NDPS एक्ट लागू नहीं किया। 2023 में हमने NDPS एक्ट लागू किया और मुझे खुशी है चिट्टे से कमाए हुई धन दौलत से जो संपत्ति अर्जित की थी उसको हमने धराशायी कर दिया, सबके बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। हिमाचल की जेलों में जो चिट्टे के सौदागर थे उनको बंद कर दिया।
1: इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी वॉकाथॉन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ जागरूकता के साथ तस्करों पर कार्रवाई जारी रहेगी। वॉकाथॉन में 25,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ के बाद से लापता ऊना के इंजीनियर सुखविंदर रतन के परिजनों ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ऊना में भेंट की। उन्होंने सरकार से सुखविंदर रतन की खोज के लिए सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार सुखविंदर रतन की तलाश के प्रयासों में तेजी लाने और उन्हें शीघ्र ढूंढने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने UPI ट्रांजैक्शन पर लगाए गए टैक्स का विरोध जताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे मध्यम और निम्न वर्ग पर असर पड़ेगा। हर्षवर्धन चौहान ने इस फैसले को वापस लेने की केंद्र से मांग की है।
3: UPI ट्रांजैक्शन पे 0.4% टैक्स लगाया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण। ये बात ठीक है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, मगर पहले ये कहकर के किया गया था कि इसको शुरू किया जाए, मगर अब टैक्स लगा दिया गया। आजकल दुकानों में और पेमेंट जितनी भी चाहे सड़कों पे जो हमारे दुकानदार हैं या हॉकर्स हैं उनकी पेमेंट भी आज ऐप के थ्रू हो रही है, तो इसका हिमाचल प्रदेश को और हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान होगा। अब जिसकी ट्रांजैक्शन 2,000 से अधिक होगी उसपे 0.4% होगा, मगर 1,000 रुपए पे आपको 40 रुपए आपको टैक्स देना है, तो बहुत हाई है ये और इसका लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इसको विड्रॉ किया जाए।
1: दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 2,000 रुपए से अधिक की मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 0.4% शुल्क के प्रस्ताव को विस्तार से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर शुल्क नहीं है और प्रस्तावित शुल्क उपभोक्ता की बजाय मर्चेंट से संबंधित है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज शिमला में बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। उद्योग मंत्री ने संबंधित विभागों को बल्क ड्रग पार्क के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पार्क में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल्द ही प्रमुख दवा निर्माण उद्योगों के साथ चर्चा की जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
5: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 1 माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन में शासन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बिंदल ने कहा कि ये 25 वर्ष सेवा, समर्पण, त्याग, राष्ट्रहित, गरीब कल्याण और विकास को समर्पित रहे हैं। उन्होंने बताया कि कल 17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों के अलावा शाम को घर घर में आशीर्वाद का दिया जलाकर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की जाएगी। बिंदल ने कहा कि 1 माह तक सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक व सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार ने पंचायती राज चुनाव में देरी करने से लेकर राजनीतिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। वे आज सिरमौर जिला के पच्छाद और नाहन में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकारते हुए भाजपा के विश्वास जताया है। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए अभी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिहर पंवर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पंजाब और चंडीगढ़ से हेरोइन के 2 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 77 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार कर 58 अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया है।
6: पूरे सप्लाई चेन पर कार्रवाई कर रही है और मुख्य सप्लायर्स की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है। इसी रणनीति के चलते इस वर्ष 2026 में अब तक 77 मुख्य सप्लायर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 58 अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क्स को प्रभावी तरीके से डिसेंटल किया गया है। इन मुख्य सप्लायर्स की गिरफ्तारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला सहित अन्य विभिन्न राज्यों से की गई। इस वर्ष अब तक 248 मामले दर्ज कर 507 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं तथा 5 किलो चिट्टा की बरामदगी शिमला पुलिस द्वारा रखी गई है।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर 6 दशक से कायम गतिरोध को मोदी सरकार ने

0: संवाद व सहमति के माध्यम से समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से 6 राज्यों के हित जुड़े हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा क्रेडिट पिपासु बनकर व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्षों से लंबित विषय को आगे बढ़ाया है और इतने महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर संकीर्ण राजनीति करने की बजाय सभी पक्षों के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। देहरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को लोकतंत्र व निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से ढलियारा में ईएलसी बियॉन्ड कैंपस अपना ईएलसी अपना लोकतंत्र फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईएलसी व स्वीप नोडल अधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान देहरा के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी व एसडीएम कुलवंत सिंह पोटन ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका, मतदान का महत्व और जिम्मेदार नागरिकता पर विचार साझा किए। उन्होंने युवाओं को डेमोक्रेसी एम्बेसडर्स के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना में आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथॉन का किया नेतृत्व। नशे के खिलाफ मुहिम में युवाओं की भागीदारी को बताया महत्वपूर्ण। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाए गए टैक्स का कांग्रेस ने जताया विरोध। भाजपा का आरोप, इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के संबंधित विभागों को दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल से सेवा संकल्प अभियान चलाएगी भाजपा। विभिन्न सामाजिक व सेवा कार्यक्रम होंगे आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आप सभी सचिन कपूर के साथ सुन रहे थे। फिलहाल श्रोतों समय हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। वैसे दिल तो बिल्कुल बोलता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं कह सकते हम कि दिल नहीं बोलता। दिल तो जो है वो ज़रूर बोलता है घर जाने का, और सभी का बोलता होगा, है ना। तो हमारा भी बोलता है कि हम घर जाएं। फ़िलहाल दोबारा फिर से मिलेंगे आपसे श्रोताओं कल शायद 4 बजे। कुछ खास कार्यक्रम हो सकता है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अगर होगा तो दो आवाज़ें आपको बिल्कुल जानी मानी आवाज़ें दो जो है वो सुनने को ज़रूर मिलेंगी 4 बजे। फिलहाल मैं वही कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ श्रोताओं, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करते रहिए, बुज़ुर्गों की सेवा करते रहिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, कभी किसी का बुरा जो है वो मत कीजिए, और हर किसी का अच्छा जो है वो ज़रूर कीजिए श्रोताओं, क्योंकि ऊपर हिसाब जो है वो कर्मों का होगा। जी बिल्कुल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अब जुदा। कभी अलविदा नहीं कहना, कभी जुदा नहीं कहना। फिर मिलते हैं। नमस्ते धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
5: बच्चन जी।
6: बोलो बच्चा जी।
5: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
6: कुली? हाँ कुली थी।
5: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
6: हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ।
5: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
6: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
5: गलत जवाब।
6: हाँ?
5: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
6: सुनिए बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
7: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
8: बेटा टीवी है उसको।
7: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
8: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
7: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
8: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हा?
9: अर्जुन
8: बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
10: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
11: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दे, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले

0: अगली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
1: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ।
1: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला
3: और डॉक्टर को भी।
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी
1: और ब्लड डोनर को।
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
3: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
4: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
3: बस हो गया।
4: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
6: 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2,00,000
8: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
5: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
9: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: पैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
12: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
11: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
12: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
11: हाँ देखो क्या हो गया।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। किशाऊ बांध पर समझौता, हिमाचल की 2000 करोड़ की बिजली लागत उठाएंगे 3 पड़ोसी राज्य। हिमाचल में इंसानी दखल और अवैज्ञानिक कटान से भी दरक रहे पहाड़। UPI से अब 2000 रुपए से अधिक बद खरीदारी पर लगेगा शुल्क, सैलरी सिस्टम से कनेक्ट होगी शिक्षकों की हाजिरी। मुख्य समाचार, अंग्रेजों के जमाने से लटकी पड़ी किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक समझौता ज्ञापन बन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बांध से पानी का लाभ पाने वाले 3 पड़ोसी राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा मिलकर हिमाचल प्रदेश के हिस्से की 2000 करोड़ रुपए की बिजली लागत का खर्च उठाएंगे। इस वित्तीय बोझ से के कारण परियोजना शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को हर साल 1200 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ फायदा होगा। केंद्र सरकार ने भी हिमाचल के पक्ष पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के धंसने भूस्खलन के लिए केवल भारी बारिश ही जिम्मेदार नहीं है। इंसानी दखल, वैज्ञानिक कटान, कमजोर भूगर्भीय संरचना और अनियोजित निर्माण की वजह से प्रदेश के पहाड़ दरक रहे हैं। एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है कि साल 2025 में मई से सितंबर तक प्रदेश में भूस्खलन की 4644 घटनाएं दर्ज की गई। इन सभी भूस्खलन की घटनाओं में से सबसे ज्यादा घटनाएं राज्य के कुल्लू जिला में दर्ज हुई हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है। इसके तहत 2000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन पर 0.4% का शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा। हालांकि 75,000 रुपये से अधिक की राशि के भुगतान के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन तय की गई है। UPI से महीने में 1,00,000 रुपये तक का भुगतान लेने वाले छोटे दुकानदारों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे, बीमा, संचार और ईंधन जैसी चुनिंदा सेवाओं के लिए 2,000 रुपये से ऊपर के भुगतान पर सिर्फ 5 रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा। यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लाभार्थियों ए के चयन को लेकर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने यह साफ कर दिया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू हुई परिवारों की पहचान प्रक्रिया के आधार पर अब किसी भी परिवार का नाम BPL सूची में न तो जोड़ा जाएगा, उनकी स्थिति वैसी की वैसी यथावत बनी रहेगी। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक की ओर से सभी उपायुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू परिवार पहचान की पूरी प्रक्रिया को अब BPL परिवारों के चयन अथवा BPL सूची में बदलाव की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। इसके आधार पर किसी परिवार का नाम अपने आप BPL सूची में शामिल नहीं होगा और न ही

पहले से सूची में दर्ज परिवार को हटाया जाएगा कि भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या सूची से बाहर करने का फैसला ग्राम सभा के माध्यम से निर्धारित सरकारी नियमों और प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। यह प्रक्रिया 19 मार्च 2025 से पहले लागू नियमों के अनुसार होगी कि परिवार पहचान की प्रक्रिया के पहले चरण से आठवें चरण तक चिन्हित परिवारों तथा 21 अगस्त 2026 के पत्र के अनुसार अंतिम चरण में मतदार पाए जान परिवारों को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार इसके लिए संबंधित परिवारों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों की सख्ती शिक्षकों पर भारी पड़ने वाली है। अब सीबीएसई स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों का वेतन उनकी ऑनलाइन हाजिरी से कनेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सीबीएसई शिक्षक हाफ डे के बाद बैंक या कहीं बाहर चले जाते हैं और उनकी 3 टाइम की हाजिरी में से एक बार भी हाजिरी मिस होती है तो उनकी वेतन सैलरी में कटौती की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने ई सैलरी सिस्टम से शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी पोर्टल को जोड़ने कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मैक्लोडगंज की प्रसिद्ध डल झील नड्डी में इस बार 18 सितंबर को पहली बार हरिद्वार की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन 19 सितंबर को राधाष्टमी के पावन अवसर पर होने वाले ऐतिहासिक शाही स्नान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मान्यता के अनुसार इस पवित्र झील में स्नान करने से चमा की मण ए महेश यात्रा के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 18 सितंबर को इस धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए टैंगल बोर्ड से डल झील तक एक विशेष एंटी चिट्टा डम्स विरोधी रैली निकाली जाएगी। शाही स्नान के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ और किसी भी अप्रिय घटना जैसे डूबने आदि को रोकने के लिए झील में गोताखोरों और SDRF की टीमों को तैनात किया जाएगा। जहरीले सांप कैस्पियन कोबरा वैज्ञानिक नाम नाजा ऑक्सियाना के काटन से होने वाली मौत भारत में पहली बार रिपोर्ट हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मामले सामने आए हैं जिनमें 2 लोगों की मौत इस घातक विषैले सांप के डंक से हुई है। इसके अलावा 2 मामले ऐसे भी हैं जिनमें कैस्पियन कोबरा के काटने से लोगों की जान बच गई है। कैस्पियन कोबरा मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाया जाता है लेकिन हिमाचल के चंबा जिले में इस घातक कोबरा की जेनेटिक मौजूदगी की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। चंबा के कैस्पियन कोबरा पर एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल में शोध पत्र भी छपा है।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
5: बच्चन जी।
6: बोलो बच्चा जी।
5: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
6: कुली? हाँ कुली की।
5: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
6: थोड़ा बहुत जानता हूँ।
5: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
6: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
5: गलत जवाब।
6: हाँ?
5: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
6: अरे सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
7: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
8: बेटा टीवी है उसको।
7: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
8: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
7: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
8: अरे क्या अर्जुन,
9: उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
10: अर्जुन
9: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
11: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
12: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
13: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
13: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
14: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
13: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
14: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
15: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
14: बस हो गया।
15: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
16: हेलो
17: राजेश जी,
10: मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
16: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
16: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
16: अरे
1: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
17: RBI कहता है,
18: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
19: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
20: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
19: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
20: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
19: हाँ देखो क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: कैसे जीते हैं भला

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।
5: बच्चन जी।
6: बोलो बच्चा जी।
5: आपने वो फिल्म कुली की थी ना?
6: कुली? हाँ कुली थी।
5: तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे।
6: हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ।
5: तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है?
6: इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है।
5: गलत जवाब।
6: हाँ?
5: वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर।
6: सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए।
7: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
8: बेटा टीवी है उसको।
7: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
8: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
7: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
8: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
9: अर्जुन
8: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
10: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
11: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
12: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
12: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
13: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
12: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
13: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
14: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
13: बस हो गया।
14: इंडिया में हर साल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें।

0: किसी की जिंदगी बचाएं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखो क्या हो गया।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।